सोई सोहेला पालिया। ग्रह राज में नरको दास करोदा, बहुविध वेद पाठ सब सोदा। देही मैं जो रह अलिपता, तिस जन की पूर्ण कहली है। जागत सूता परम विगुता, बिन गुर मुक्त ना होई है मीता। साध संग तुटे हो बंधन, एको एक निहाली है। कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा। मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख समझाने। घट घट राम हाली है, संसार में सहसा व्यापै। अकथ कथा गोचर नहीं जापै, जिसे बुझाए सोई बूझै। ओ बालक वांगी पाली है, छोड़ बह तो छूटै नाही। जो सिंचै तो पौ मन माही। इस ही मह जिसकी पत राखै, तिस साधु चौर ढाली है। जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जोनी फिरना। जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है। जित जित लावै तित तित लगना, कर कर वेखै अपने जचना। नानके पूर्ण सुखदा ते, तू देहता नाम समाली है। मारू महला पंजवां, बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे। एक तत्ते एक बोलन मिठे। अस्त्या दोत पया उठ चले, ज्यों ज्यों औध विहानियां। पाप करेंदण सर पर मुठे, अजरा ईल फड़े फड़ कुठे। दोजग पाए सृजनहार, लेखा मंगै बाणियां। संग न कोई भैया बेबा, माल जोबन धन छोड़ वंजेसा। करण करीम न जातो करता, तिल पीड़े जो कहानियां। खुश खुश लैंदा वस्त पराई, वेखै सुने तेरे नाल खुदाई। दुनिया लभ पया खात अंदर, अगली गल न जानिया। जम जम मरै मरै फिर जम्मै, बहुत सजाए।

जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पया सिर साहा हे। संजोग वियोग मेरे प्रभ की है, सृष्टि उपाए दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पय निराले, गुरमुख सीर सनाहा हे। नीके साचे केवा पारी, ससव दाले गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल्ले, सब सच्चा ओ महा हे। काची समी टोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रस सलामत, चूका जमका फाहा हे। सबको बोले अपन पाने, मनमुख दूजे बोल न जाने। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता है। दुख में जन्मे

सुन कलाय परंपरधारी आप निरालमो अप्रियपारी आपे कुदरत कर कर देखै सुनो सुन उपाएंदा पौन पानी सुनै ते साजे सृष्टि उपाए काया गड़राजे अग्न पानी जियो जो तुम्हारी सुन्ने कला रहाएंदा सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए सुन्ने वरते जुग सबाए इस पद विचारे सो जन पूरा तिस मिलिए परम चुकाएंदा सुनो सप्त सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे तित सतसर मनुआ गुरमुख नावै फिर बाहुड़ जो न पाएंदा सुनो चंद सूरज गहनारे तिसकी जोत तिरपमन सारे सुन

पाए त्रिभवन साज मेखली माया आपो पाए पाएगा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी उत पुज चलत किया सिर करता है बिस्मा सब देखाए।

बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित शरीरा, बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावे मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावे, जिन गुरमुख एको जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वरतै सब अंतर, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा, जो तुत भावै सोई करसै, सच्चे स्यो मन राता है।

किस ही जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान करे तुद पावे, होर केती चख चख आवे जावे, जिनका पख करे तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तुद आनी है। हर हर नाम जिन्नी सदा ते आया, तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो तानी है। तू सब मैं वरतै हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दा दसाणी है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय धरी जिन तरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अग्नि उपाय इंद्र में बाधी, सो प्रभ राखे पाई है। जी जंत कौर जिक संबाहे, करण कारण समराथ्या पाहे, खिन में थापो थापन हारा, सोई तेरा सहाई है। मात गर्व में जिन प्रतपालिया, सास ग्रास हुए संग संभालिया, सदा सदा जपिए सो प्रीतम, वड्डी जिस वडे आई है। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब निवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्व सुधारण, किस कीमत कही न जाई है। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वसिया हर भगवंता, मात पिता सुत बंध पाई, जिन ए सृष्टि उपाई है। प्रभ आए सरना पव नहीं करना, साध संगत नीचो है तरना, मन बच करम्या राधे करता, तिस नाही कदे सजाई है। गुण निदान मंत्र में रव्या, जन्म मरण की जोन न पव्या, दुख विनाश किया सुख डेरा, जा तृप्त रहे आगाई है। मीत हमारा सोई स्वामी, थांथनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर स्वामी परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तंता, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने, लख चौरासी नरक न देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊंच अथाहो अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जंत सहत आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुनो, साची कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हम मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है। जय जय कार जपो जगदीश, बल बल जाई प्रभ अपने ईश, तिस बिन दूजा अवर ना दिस, एका जगत सबाई है। सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन दाता, सिमर सिमर जीवै जन तेरे, एक अंकार समाई है। भक्त जना का प्रीतम प्यारा, सबै उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुनी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, संगी जोगी नार लपटाणी, उर्ज रही रंग रसमाणी, किरत संजोगी पै एकत्रा, करते भोग बिलासा है। जो पिर करे सो तन तत् मन, पिर तने सिंगार रखे संगन, मिल एकत्र वसै दिन राती, प्रयो दे तने दिलासा है। धन मांगे प्रयो बोबे तावे, जो पावे सो आन दिखावे, एक वस्त को पहुँच ना साके, तन रहती भूख प्यासा है। तन करे बिनो दो कर जोरे, प्रे परदेस ना जाहो वसो कर मोरे, ऐसा बणज करो गृह पीतर, जित उतरे भूख प्यासा है।
सगले कर्म धर्म जुग साधा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा, पही कृपा नानक सतसंगे, तौ धन पिर आनंद उलासा है, तन अंधी पिर चपरसियाना, पंच तत्कार चन रचाना, जिस वखर को तुम आए हो, सो पायो सतगुर पासा है, तन कह तू वस मैं नाले, प्रे सुखवासी बाल गोपाले, तुझे बिना हो कित ही ना लेख, वचन देहे छोड़ ना जासा है, फिर कहया हो हुक्मी बंदा, ओह पारो ठाकरो जिस कान ना शंदा, जिचर रख है तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता उड़ सिदासा है, जाओ प्रे बचन कह तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर पिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासा है, आईया गया पिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया, पूर सिदायो छूटर माटी, देख नानक मिथन मुहासा है, हरे मन लोभी सुन मन मेरे, सतगुर सेव दिन रात सदेरे, बिन सतगुर पचबुए साकत, निगुरे गल जमफासा है, मन मुख आवे मन मुख जावे, मन मुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मन मुख भोगे, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पाया, तिस कौन मिटावे जे प्रभ पैराया, सदा आनंद करे आनंदी, जे सिर पाओ पया गल खासा है, हाँ बलिहारी सतगुर पूरे, शरण के दाते बचन के सूरे, ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता, विछड़ ना कत ही जासा है, गुण निदान किशकीम ना पाई, कट कट पूर रहे हो सब ठाई, नानक शरण दीन दुख भंजन, हौरेण तेरे जो दासा है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, करे आनंद आनंदी मेरा, कटकट पूर्ण सिर सिर नबेरा, सिर साहा कै सच्चा साहेब, अवर नाही को दूजा है, हरखवंत अनंत दयाला, प्रगट रहे ओ प्रभ सरब्यो जाला, रूप करे कर वेखै विकसै, आपे ही आप पूजा है, आपे कुदरत करे विचारा, आपे ही सच करे पसारा, आपे खेल खिलावै दिन राती, आपे सुन सुन भीजा है, साचा तख्त सच्ची पातशाही, सच खजीना साचा साही, आपे सच तारियो सब साचा, सच्चे सच वर्ती जाहे, सचत पावस सच्चे केरा, साचा थान सदा प्रभ तेरा, सच्ची कुदरत सच्ची बाणी, सच साहेब सुख की जाहे, एको आप तू है वड राजा, हुक्म सच्चे के पूरे काजा, अंतर बाहर सबके जाने, आपे ही आप तीजा है, तू वड रसिया तू वड भोगी, तू निर्वाण तू है ही जोगी, सर्व सुख सहज कर तेरा, अम्यो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझे ते होवे, देह दान सब सह जंत लोवे, टूट ना आवे पूर भंडार, तृप्त रहे आगी जाहे, जाचै सिद्ध साधक बनवासी, जाचै जति सती सुखवासी, एकदा तार सगल है जाचक, देह दान सृष्टि जाहे, करे भगत हर रंग अपारा, खिन मै थापो थापन हारा, पारो तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जाहे, जिस देह दर्श सोई तुद जाने, ओह गुर कै शब्द सदा रंग माने, चतर स्वरूप से आना सोई, जो मन तेरे पावी जाहे, जिस चीत आवै सो वे प्रवाह, जिस चीत आवै सो साचा सहा,
ਜਿਸ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਿਸ ਪਹੁ ਕਿਹਾ, ਅਵਰ ਕਹਾ ਕਿਸ ਕੀ ਜਾਹੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ ਅੰਤਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੈ ਤੂਟਾ ਗੰਡਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ, ਅਮਿਓ ਚੋਲ ਚੋਲ ਪੀ ਜਾਹੇ। ਮਰੈ ਨਾਹੀ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਅਮਰ ਭਇਆ ਅਬਨਾਸੀ ਥੀਵੈ। ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਵੈ, ਗੁਰਦੂਰ ਕੀ ਆ ਪਰਮੀ ਜਾਹੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਲਾਗਾ ਪੂਰੇ ਮਹੇ ਸਮਾਣੀ। ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੰਗਾ, ਕਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲੀ ਜਾਹੇ। ਬਾਰਹਾ ਕੰਚਨ ਸੁਧ ਕਰਾਇਆ, ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਵਨੀਸ਼ ਚੜਾਇਆ। ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਸਰਾਫੀ, ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਤਾਈ ਜਾਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਮਨ ਭੀ ਜਾਹੇ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਲਹੇ, ਏਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ। ਗੁਰਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਖਟਕਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ, ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਸੰਗ ਨਾ ਫਾਸੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਟੇ ਅਪਮਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਆਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਜੀ ਦਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਹਰ ਜਸ ਮੁਖ ਭਣੀਐ। ਕਲ ਕਲੇਸ ਮਿਟਾਏ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਦੇਵੈ ਮਾਨਾ ਹੈ। ਆਗਮਾ ਗੋਚਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਭੂਲਾ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਕੋ ਬਿਗਨਾ ਭਗਤੀ, ਹਰ ਪੂਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਸਭਨੀ ਠਾਈ, ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਗੋਸਾਈ। ਊਚ ਊਨ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨਾ, ਮਨ ਲਾਗਾ ਸਹਿ ਧਿਆਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹਿ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆ ਗੁਰਪੂਰੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਪਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਏ ਸਮਾਣੀ, ਆਪ ਸੁਣੀ ਤੈ ਆਪ ਵਖਾਣੀ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਜਪੀ ਤੇਈ ਸਭ ਨਿਸਤਰੇ, ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਨੇ ਚਲਥਾਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪਣ ਭਾਣੈ। ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਜਾਚੈ ਜਨ ਤੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਕੁਰਬਾਨਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸਮੈ ਵਰਤੈ ਆਪ ਨਿਰਾਰਾ। ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਿਹਨ ਕੋਈ, ਸਭ ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਏਂਦਾ। ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੋਨ ਸਵਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲਈਐ। ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋਈ ਭੁੱਲੈ, ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏਂਦਾ। ਹਰ ਸੋ ਕਾ ਨਗਰੇ ਹੋ ਕੀਆ, ਸੇ ਉਭਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀਆ। ਤ੍ਰਿਹੋ ਗੁਣਾ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਰਾ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਅਨਕ ਕਰਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਜੋ ਕੀਜੈ ਸੋ ਬੰਧਨ ਪੈਰੇ। ਕਰੁਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ ਜਨ ਜੰਮੈ, ਸਭ ਲਾਹਾ ਮੂਲ ਗਵਾਏਂਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪਰਦਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏਂਦਾ। ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਵਾ, ਸਭ ਕਾਲੈ ਵਸੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ। ਨਿਚਲ ਏਕ ਆਪ ਅਬਨਾਸੀ, ਸੋ ਨਿਚਲ ਜੋ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏਂਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉੱਠੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਫਿਰ ਸਰਲੈ ਸਰਲ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਚਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਦੁਆਰੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਜਿਤ ਮੰਤਰ ਪਤਾਸੈ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਠਹਿਰਾਏਂਦਾ।
रूड़ो ठाकर कितै वस न आवै, हर सो किश करे जे हर क्या संता पावै, कीता लोड़न सोई करायन दर फेर न कोई पाएंदा, जिथे औकट आए बंत है प्राणी तिथे हर त्याई है सारिंग पानी, जिथे पुत्र कलतर ना बेली कोई तिथे हर आप छड़ाएंदा, वड्डा साहेब अगमा था क्यों मिलिए प्रवे प्रवाह, काट सिलक जिस मार्ग पाए सो विच संगत वासा पाएंदा, हुक्म बूझे सो सेवक कही है बुरा भला दुए संसार सही है, हाँ मैं जाए ता एको बूझे सो गुरमुख सही समाएंदा, हर के भगत सदा सुखवासी बाल सुभाए अति तो दासी, अनकर अंग करै बो भाती जो पिता पूत लाडाएंदा, अगमा गोचर कीमत नहीं पाई ता मिलिया जा ले मिलाई, गुरमुख प्रगट पाया तिन जन कहो जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा, तू आपे करता कारण करना सृष्टि उपाय तरी सब तरना, जन नानक शरण पया हर द्वारा हर भावै लाज रखाएंदा, मारू सोल हे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो दिसै सो एको तू है बाणी तेरी सरवनी सुनिए, दूजी अवरना जाप सकाई सगल तुम्हारी धारणा, आप चितारे अपना किया आपे आपे आप प्रभथिया, आप उपाय रचियोन पासारा आपे कटकट सारणा, एक उपाय वड़दरबारी एक उदासी एक करबारी, एक भूखे एक तृप्त अगाए सबसे तेरा पारणा, आपे सत सत सत साचा पोत पोत भगतन संगराचा, आपे गुप्त आपे है प्रगट अपना आप सारना, सदा सदा सद हो बनहारा ऊंचा अगमा था अपारा, ऊने परे परे पर ऊने एह चलत स्वामी के कारणा, मुखसा लाही सच्चे साहा नैनी पेखा अगमा था, करनी सुन सुन मंतन हरिया मेरे साहेब सगले उदाहरणा, कर कर वेख कीता अपना जी जंत सोई है जपना, अपनी कुदरत आपे जाने नदरी नदर निहालना, संत सभा जै बैसे प्रभ पासे आनंद मंगल हर चलत तमासे, गुण गावे अनहद तुन बाणी तै नानक दास चितारना, आवन जाना सब चलत तुम्हारा कर कर देखे खेलिया पारा, आप यो पाए

डर चूके बिनसे अंधियारे प्रगट पए प्रभ पुरख निरारे आप छोड़ पए सरनाई जिसका साथ तिसका हलना ऐसा को वडभागी आया आठ पहर जन खसम ते आया ते जन कै संग तरै सब कोई सो परवार सदारना ए बख्शीस खसम ते पावा आठ पहर कर जोड़ ते आवा नाम जपी नाम सही समावा नाम नानक मिले उचारना मारू महला पंजवा सूरत देखना पूल गवारा मिथन मुहारा झूठ पसारा जग में कोई रहन ना पाए निचल एक नारायणा गुरपुरे की पौ सरनाई मोह सोग सब पर मिटाई एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना जिस नामे कौ तरसै बहु देवा सगल भगत जा की कर दे सेवा अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुरपुरे ते पायना होर द्वारा कोई ना सूजै त्रिपमन तावै ता किशु ना बूजै सतगुर साहो भंडार नाम जिस एहो रतन तिसै ते पायना जा की तूर करे पोनीता सुर नर देव ना पावै मीता सत पुरख सतगुर परमेसर जिस भेड़त पार परायणा पार जात लोड़ै मन प्यारे काम तिन सोही दरबारे तृप्त संतोख सेवा गुरपुरे नाम कमाए रसायणा गुर कै शब्द मरै पंच धातु पै पार ब्रह्म होवै निर्मला तू पारस जापेटै गुरपुरा ता पारस परस दिखायणा कई बैकुंठ नाही लवै लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे एक अंकार सतगुर ते पाईऐ हौ बल बल गुर दरसायणा गुर की सेवना जाने कोई गुर पार ब्रह्मया गोचर सोई जिसनो लाए लए सो सेवक जिसवट पाग मथायणा गुर की महिमा भेद ना जाने तुष मात सुन सुन बखाने पार ब्रह्म परंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायना जा की सोए सुनी मन जीवै हृदय वसै ता ठंडा थीवै गुरमुखो अलाए ता सोबा पाए तिस जमकै पंथ ना पायना संतन की सरनाई पढ़िया जियो प्राण तनिया गै तरिया सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायणा निर्गुण कौ संग लिहो रलाए कर कृपा मोह टै लै लाए पखा फेरो पीसो संत आगै चरण तोए सुख पायणा बहुत द्वारे परम परम आया तुमरी कृपा ते तुम सरनाया सदा सदा संतै संग रखो एहो नाम दान देवायणा पय कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे सुख सहजो सदा आनंदा नारक दा दसायणा मारू सोल हे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरै धरती अर आकाशा सिमरै चंद सूरज गुणतासा पौन पानी बै संतर सिमरै सिमरै सगले उपार जना सिमरै खंड दीप सब लोवा सिमरै सिमरै पाताल पुरिया सच सोवा सिमरै खाणी सिमरै बाणी सिमरै सगले हर जना सिमरै ब्रह्मे बिशन महेसा सिमरै देव ते कोट ते तीसा सिमरै जख दैत सब सिमरै अगंत न जाई जसगना सिमरै पशपंखी सब भूता सिमरै बन पर्वत अवधूता लता बली साग सब सिमरै रव रया स्वामी सब मना सिमरै थूल सूक्ष्म सब जनता सिमरै सिद्ध साधक हर मंता गुप्त प्रगट सिमरै प्र मेरे सगल पवन का प्रभ धना सिमरै नर नारी या शर्मा सिमरै जात जोत सवरना सिमरै गुणी चतर सबेते सिमरै रैणी अर देना सिमरै

पौड़ी। पाणै हुक्म नायोन पाणै सुख पाया, पाणै सतगुर मेलेओन पाणै सच ते आया। पाणै जेवड होर दात नाही, सच आख सुनाया। जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया, नानक ते शरणागति जिन जग त्यो पाया। श्लोक महला तीजा। जिनको अंदर ज्ञान नहीं, पैकी नाही बिंद, नानक मोया का क्या मारना, जे आप मारे गोविंद। महला तीजा। मन की पत्री वचनी, सुखी हूं सुखसार, सो ब्राह्मण पलाया खीए जे बुझे ब्रह्म विचार। हर साल आहे हर पड़े, गुर कै शब्द विचार, आया ओ प्रमाण है जे कुल का करे उधार। अगै जात न पुछिए, करनी शब्द है सार। होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना, बिखिया नाल प्यार। अंदर सुख ना हो गई, मनमुख जन्म खुवार। नानक नाम रते से उबरे, गुर कै हित अपार। पौड़ी। आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म न बूझे खसम का सोई नर कच्चा। जित भावै तित लाएंदा, गुरमुख हर सच्चा। सबना का साहिब एक है, गुर शब्दी रचा। गुरमुख सदा सलाही है।

ऐसी शोभा जनै की जेवड़ हर परताप है सब अंतर जन वरताया हर जनते जापै डखणे महला पंजवा जिन्ना पिछे हौ गई से मैं पिछे पी रव्यास जिन्ना की मैं आसड़ी तना महिंजी आस महला पंजवा गिली गिली रोडड़ी पौंदी पव पव आए जो बैठे से फाथिया उबरे पाग मथाए महला पंजवा डिठा हब मजाहे खाली कोई न जानिया तै सखी पाग मथाहे जिन्नी मेरा सज्जन रावया पौड़ी हौ ढाडी दर गुण गावंदा जे हर प्रभ पावै प्रभ मेरा थिरथावरी होरे आवै जावै सो मंगा दान गुसाइया जित भुख लै जावै प्रभ जीओ देवो दर्शन अपना जित ढाडी तृपतावै अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी को महल बुलावै प्रभ देखदिया दुख भुख गई ढाडी को मंगन चेतना आवै सबे इच्छा पूरिया लग प्रभ कह पावै हौ निर्गुण ढाडी बख्सियोन प्रभ पुरख वेद आवै दखणे महला पंजवा जा छुट्टे ता खाक तू सुन्नी कंतना जानही दुर्जन सेती ने हो तू कै गुण हर रंग मानही महला पंजवा नानक जिसबिन कड़ी ना जीवना विसरे सरै ना बिंद तिस स्यों क्यों मन रूसी जिसै हमारी चिंद महला पंजवा रते रंग पार ब्रह्म कै मंतन अत गुलाल नानक विणना वै आलूंदया जिती होर ख्याल पवड़ी हर जियो जा तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिनी ठगी जग ठगया से तुद मारने वाड़ा गुर भौजल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमति सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रियां वस कर दित्तीओ सतवंता साड़ा जित लाइयन तै लगदिया नै खिंजो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुरे अंदर वाड़ा गुरु नानक तुठा पाए रहो हर वसदा नेड़ा दखणे महला पंजवा जा मुआ वै चित तू ता हबे सुख लहाओ नानक मन ही मंज रंगा वला प्रीत हिंजा नाओ महला पंजवा कपड़ भोग विकार ए हबे ही शार खाक लोड़ेंदा तन खे जो रते दीदार महला पंजवा क्या तकै ब्या पास कर ही अड़े हिक आधार थियो संतन की रेण जित लब्बी सुखदा तार पौड़ी विण करमा हर जियो ना पाई है बिन सतगुर मनुआ ना लगै धर्म धीरा कल अंदरे एहो पापी मूल ना तगै अह कर करे सो अह कर पाए एक कड़ी मोहत ना लगै चारे जुग मैं सो दिया विण संगत अहंकार ना पगै हम मैं मूल ना छुट्टई विण साधु सतसंगै तिचर था ना पावई जिचर साहेब स्यो मन पंगै जिन जन गुरमुख सेव्या तिस कर दी बाणिया पगै हर कृपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगै दखणे महला पंजवा लोड़ इंदो हब जाए सो मीरा मीरा नसिर हठ मजाहू सो तनी चौंदो मुख्या लाए महला पंजवा माणकू मोहे माओ डिन्ना तनिया पाहे हे आओ महिंजा ठंडड़ा मुखो साचा लाए महला पंजवा मूथी आउ सेज नैना पिरी विछावना जे देख एक वार ता सुख की माहू बहारे पौड़ी मन लोचै हर मिलन कहो क्यों दर्शन पाईया मैं लखवड़ते साहेबा जे बिंद बुलाईया मैं चारे कुंडा पालिया तुझे वड़ना साईया मैं दस्यो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाईया मन यार पाओ हम मैं तजो इत पंथ जुलाईया नित सेवो साहब अपना सत्संग मिलाईया सबे आसा पूरिया गुर महल बुलाईया तू जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाईया डखणे महला पंजवा मूथियाउ तखत प्री महिंजे पातसा पाव मिलावे कोल कवल जिवें बिगसाम दो महला पंजवा प्रिया संदड़ी भुख मूलावण थी विथरा जान मिठाई एक।

करो खट कर्म जुगत ध्यान धरो, उपाव सगल कर हारो, नय नय हुटै बिकराल, शरण बंदन करना पते, पाव हरण हर हर हर हरे, एक तू ही दीन दयाल, प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे परम मोह सागर, लग संतना पग पाल, केदारा महला पंजवा, कर चौथा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सरनी आयो नाथ निदान, नाम प्रीत लागी मन पीतर, मांगन कौ हरदान, रहाओ सुखदाई पूर्ण परमेश्वर, कर कृपा राखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी, हर गुण रसन बखान, गोपाल दयाल गोबिंद दमोदर, निर्मल कथा ज्ञान, नानक कौ हर कै रंग रंग, चरण कमल संग ध्यान, केदारा महला पंजवा, हर के दर्शन को मन चाओ, कर कृपा सत्संग मिलावो, तुम देवो अपनो नाओ, रहाओ करो सेवा सतपुरख प्यारे, जत सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई, कमन अनूप तेरो ठाओ, सर्व प्रतपालय सगल संभालय।

मगर मना मैं चितवो वासा नैन उतार तुहारी रहाओ। ओए दिन पहर मूर्त पल कैसे, ओए पल करी किहारी, खुले कपटो तबट बुझ तृष्णा, जीवो पेख दरसारी। कौन सो जतन उपाओ कनेहा, सेवा कौन बिचारी, मान अवमान मोह तज नानक, संतै संग उदारी। केदारा महला पंजवा, हर हर हर गुण गावो, करो कृपा गोपाल गोबिंदे, अपना नाम जपावो रहाओ। काड लिए प्रभयान बिखैते, सा संग मन लावो, भ्रम पौ मोह कट्यो गुरबचनी, अपना दर्श दिखावो। सब की रेन होए मन मेरा, अहम बुद्ध तजावो, अपनी भगत देह दया लावड़, भागी नानक हर पावो। केदारा महला पंजवा, हर बिन जन्म अकार्थ जात, तज गोपाल आन रंग राचत, मिथ्या पहरत खात रहाओ। तन जोबन संपै सुख भुगवै, संग ना निभत मात, मृग तृष्णा देख रचियो बावर, द्रुम छाया रंग रात। मान मोह महामद मोहत, काम क्रोध कै खात, कर गै लेहो दास नानक कहो, प्रभ जियो होए सहात। केदारा महला पंजवा, हर बिन कोई न चालस साथ, दीना नाथ करना पत स्वामी, अनाथा के नाथ रहाओ। सुत संपत बिख्या रस भुगवत, नह निबहत जम कै पाथ, नाम निधान गाओ गुण गोबिंद, उधर सागर के खात। सरण समरथ या काथया गोचर, हर सिमरत दुखलाथ, नानक दीन तूर जन बांशत, मिलै लिखत तुर माथ। केदारा महला पंजवा, घर पंजवा, एको अंकार सतगुर प्रसाद, बिसरत नाहे मन ते हरी, अब एह प्रीत महाप्रबल पई, आन बिखै जरी रहाओ। बूंद कहां त्याग चात्रक मीन, रहत ना करी, गुण गोपाल उचार रसना, टेव एह परी। महानाद कुरंक मोहयो, बेद तीखन सरी, प्रभ चरण कमल रसाल नानक, गाठ बांध तरी। केदारा महला पंजवा, प्रीतम बस्तो रिद मैं खोर, परम पीत निवार ठाकर, गह लेहो अपनी ओर रहाओ। अदक गर्त संसार सागर, कर दया चारो तोर, संत संग हर चरण बोयथ, उदर ते लै मोर। गर्भ कुंट मैं जिने तारियो, नहीं बिखै मन मैं होर, हर सकत सरन समरथ नानक, आन नहीं निहोर। केदारा महला पंजवा, रसना राम।

भय कलमलहान रहाओ। त्याग चलना सगल संपतो काल सिर पर जान, मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर प्रमान। सत पुरख्या काल मूर्त हृदय तारो ध्यान, नाम निधान लाभ नानक बसते हे प्रवान। केदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार, काल कलेश ना कछ व्यापै संत संग व्यवहार। रहाओ कर अनुग्रह आप राखियो न उपजतो बेकार, जिस प्राप्त होए सिमरै तिस दहत न संसार। सुख मंगल कल आनंद हर जस, सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार। नानक दास शरणागति तेरे संतना की शार। केदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत, जीवन रूप विसार जीवै तेह कत जीवन होत। रहाओ खात पीत अनेक बिंजनु, जैसे पार बहक खोत। आठ पहर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत। तज गोपाल जे आन लागे से बहु प्रकारी रोत। कर जोर नानक दान मांगै हर रखो कंठ परोत। केदारा महला पंजवा संतै तूर ले मुख मली, गुणा अचत सदा पूर्ण नै दुख व्यापै कली। रहाओ गुरबचन कार्य सर्व पूर्ण, ईत उत न हली। प्रभ एक अनक सर्वत पूर्ण, दिखै अगन जली। गह पुजा लीनो दास अपनो, ज्योत ज्योति रली। प्रभ चरण सरन अनाथ आयो, नानक हर संग चली। केदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचै, कोट सांत आनंद पूर्ण जलत शांति बुझै। रहाओ संत मार्ग चलत प्राणी, पतत उदरै मुचै। रेन जनकी लगी मस्तक अनक तीर्थ सुचै। चरण कमल ध्यान पीतर कड़कटै स्वामी सुजै। शरण देव्या पार नानक बहुर जम नहीं लुजै। केदारा शंत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मिल मेरे प्रीतम प्यारिया। रहाओ पूर रहा सर्वत्र मैं सो पुरख विधाता, मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता। संतन संग जाता पुरख विधाता, काट काट डदर निहालिया। जो सरनी आवै सर्व सुख पावै, तिल नहीं पन्नै कहलिया। हर गुणित गाए सह सुभाए, प्रेम महारस माता। नानक दास तेरी शरणाई तू पूर्ण पुरख विधाता। हर प्रेम भगत जन बेदया से आन कत जाही, मीन बिशोहा नास है जल बिन मर पाही। हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है, चात्रक बूंद प्यासिया। कवरैन बिहावै चकवी सुख पावै, सूरज करण प्रगासिया। हर दर्श मन लागा दिन सुभागा, अंदन हर गुण गाही। नानक दास कहै बेनंती कत हर बिन प्राण टिकाही। सास बिना ज्योंदे हुरी कत सोभा पावै, दर्श बिहुना साध जानो खिण टिकन आवै। हर बिन जो रहना नरक सो सहना, चरण कमल मन बेदया। हरसक बैरागी नाम लिव लागी, कतो ना जाय नखेदया। हर स्यो जाय मिलना साध संग रहना, सो सुख अंक नाम आवै। हो कृपाल नानके स्वामी, हर चरण संग समावै। खोजत खोजत प्रभ मिले हर करना तारे, निर्गुण नीचा नाथ मैं नहीं दुख बिचारे। नहीं दुख बिचारे पूर्ण सुख सारे, पावन बिरद बखानिया। भगत वछल सुन अंचलो गहया, घट घट पुर समानिया। सुख सागरो पाया सह सुभाया, जन्म मरण दुख हारे। कर गह लीने नानक दास अपने, राम नाम उर हारे। राग के दारा बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उस्तत निंदा दो बिबरजत, तजो मान अब माना।
लोहा कंचन सम कर जाना ते मूर्त भगवाना, तेरा जन एक याद कोई, काम क्रोध लोमो बिरबरजत, हर पद चीने सोई रहाओ। राजगुण तम गुण सतगुण कहिया, एह तेरी सब माया, चौथे पद को जो नर चीने तिन ही परम पद पाया। तीर्थ बर्त नेम सो संयम, सदा रह निकम्मा, तृष्णा अर माया परम चूका, चितवत आत्म रामा। जेह मंदर दीपक परगासिया, अंधकार तह नासा, निरपव पूर रहे परम पागा, कह कबीर जनदासा। किन्ही बनजिया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संतो बनजिया नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी रहाओ। साचे लाए तो सच लागे, साचे के व्यवहारी, साची बस्त के पार चलाए, पहुंचे जाए पंडारी। आपै रतन जवाहर मानक, आपै है पासारी, आपै दह दस आप चलावे, निचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा, ज्ञान गुण पर डारी, कहत कबीर सुनोरे संत हो, निभी खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत, उल्टो पवन फेरावो, मन मत वार मेर सर पाठी, अमृत तार चुआवो। बोलो पहिया राम की दुहाई, पीवो संतो सदा मत दुर्लभ, सहजे प्यास बुझाई रहाओ। पै बिच पाओ पाए को बूझै, हर रस पावै पाई, जेते कट अमृत सब ही मैं, पावै सह पियाई। नगरी एकै नौ दरवाजे, तावत बरज रहाई, त्रिकुटी छूटै दसवां दर खूलै, तमन खीवा पाई। अपै पद पूर ताप तह नासे, कह कबीर बिचारी, उबट चलन ते एह मद पाया, जैसे खोंद खुमारी। काम

साच शब्द बिन कहो न छूट सो वृथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हो ममता कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपो रस रसना इन बिद तर तू तारी। बहरे करन अगल पई होची शब्द सहज नहीं बूझिया। जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुरे अंद न सूझिया। रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी। प्रणमत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिव लागी। पहराओ महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी। नेत्री तुहंद करन पै बहरे मनमुख नाम ना जानी। अंदले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा। चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती। जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस। पशु पहे कदे होहे नानिके। अमृत का रस विरली पाया सतगुर मेल मिलाए। जब लग शब्द भेद नहीं आया तब लग काल संताए। अनको दर कर कबहू ना जानस एको दर सचियारा। गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा। पहरो महला पहला सगली रैन सोबत गलफाही। दिन से जंजाल गवाया खिन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया। जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख भारी। क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ। ऊं दो कवल मन मुख मत होची। मन अंधे सिर धंधा काल बिकाल सदा सिर तेरे बिन्ना मैं गलफंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंधले शब्द सुरत नहीं पाई। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंधलो तंद कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान में होने। शब्द विचार राम रस चाखिया नानक साच पतीने। पहरो महला पहला गुर कै संग रह दिन राती। राम रसन रंग राता अवर न जानस शब्द पछाणस। अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन भावै। आप मारे परम प्रदाता गुर की कार कमावै रहाओ। अंतर बाहर पुरख निरंजन आद पुरखिया देसो। घट घट अंतर सर्ब निरंतर रव रहया सच वेसो। साच रते सच अमृत जेवा मिथ्या मैल नाराई। निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई। गुणी गुणी मिल लाह पावस गुरमुख नाम वडाई। सगले दुख मिटै गुर सेवा नानक नाम सखाई। पैरो महला पहला हिरदय नाम सर्व तन धारण। गुर प्रसादी पाई है अमर पदार्थ ते कृतार्थ सह ध्यान लिव लाई है। मन रे राम भगत चित लाई है। गुरमुख राम नाम जप हिरदय सह सेती कर जाइए रहाओ। परम भेद पौ कबो ना छूटस आवत जात ना जानी। बिन हर नाम को मुक्त ना पावस डूब मोए बिन पानी। धंधा कर तो सगली पत खोबस भरम ना मिटस गवारा। बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंत पसारा। अकुल निरंजन स्यों मन मानिया मन ही ते मन मुआ। अंतर बाहर एको जानिया नानक अवर ना दुआ। पहरो महला पहला जगन होम पुनता पूजा देह दुखी निर्दुख सह। राम नाम बिन मुक्त ना पावस मुक्त नाम गुरमुख लह। राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले। बिन नाम नेफल मर भ्रम ना रहाओ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे। बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे। डांड कमंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गवन अत भ्रमण करे। राम नाम बिन सांत न आवे जप हर हर नाम सो पार पर। जटा मुकुट तन भस्म लगाई
बस्त्र छोड़ तन नग्न पया, राम नाम बिन तृप्त न आवै, किरत कै बांधै भेख पया। जेते जी जंत जल थल महियल, जतर कदर तू सर्ब जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को, हर रस नानक झोल पिया। राग पैरव महला तीजा, चौप दे कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जात का गर्भ ना करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गावारा, इस गर्भ ते चले बहुत विकारा। रहाओ चारे वर्ण आख्या सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा, बहुविध भांड है कड़ै कुमारा। पंच तत् मिल देही काया कारा, घट वद को करै बिचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई, बिन सतगुर पेटे मुक्त ना होई। पैरव महला तीजा, जोगी गृही पंडित भेख तारी। ए सूते अपने अहंकारी, माया मद माता रहया सोए। जागत रहे ना मुसे कोई, रहाओ सो जागे जे सतगुर मिले। पंच दूत ओ वसकत करे, सो जागे जो तत् विचारे। आप मरे अवरा ने मारे, सो जागे जो एको जाने। पर किरत छोड़े तत् पछाणे, चहो वरना विच जागे कोई। जमै काले ते छूटे सोए, कहत नानक जन जागै सोए। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए। पैरव महला तीजा, जा कौ राखै अपनी सरनाई। साचै लागै साचा फल पाई, रे जन कैस्यो करो पुकारा। हुक्मे होवा हुक्मे वर्तारा, रहाओ एहो आकार तेरा है तारा। खिर मैं बिनसै करत ना लागै बारा। कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा पूजो परम ना पूलो कोए। पैरव महला तीजा, मैं कामण मेरा कंत करतार। जिहा कराए तिहा करी सिंगार, जात सपावै ता करे भोग। तन मन साचे साहिब जोग, रहाओ उसत निंदा करे क्या कोई। जाया पे वरतै को सोई, गुर प्रसादी प्रेम कसाई। मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई, पंत नानक करे क्या कोई। जिसनो आप मिलावै सोए। पैरव महला तीजा, सो मुन जे मन की दुबदा मारे। दुबदा मार ब्रह्म बिचारे, इस मन को कोई खोजो पाई। मन खोजत नाम ना उन्द पाई, रहाओ मूल मोह कर करतै जगतो पाया। ममता लाए परम पुलाया, इस मन ते सब पिंड पुराना। मन कै विचार हुक्म बुझ समाणा, कर्म होवै गुर कृपा करै। एहो मन जागै इस मन की दुबदा मरै। मन का स्वभाव सदा बैरागी, समय वसै अतीत अनरागी। कहत नानक जो जाने पेयो, आद पुरख निरंजन देओ। पैरव महला तीजा, राम नाम जगत निस्तारा। पवजल पारो तारन हारा, गुर प्रसादी हर नाम समालो। सदी निभाए तेरे नाल, रहाओ

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब को लो धारण हार। बिन नावे मनमुख

नाम बिना सब दुनिया शार, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपन खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण, पहरो महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाणा सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवो, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मैं कनाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सदगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पहरो महला पंजवा, अपने दास कौ कंठ लगावै, निंदक कौ अगन में पावै, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथू नाही, पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहरो महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री तर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितवी तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध ज्ञाना, हर की भगत करै तिन निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, स्वागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पै सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पैरो महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊब पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपि तपि सरमन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए, चहो मैं पेख्यो खट मैं पेख्यो, दस अष्टी सिमरताए, सब मिले को एक बखाने, तव किस्ते कहो दुराए, अगह अगह बेअंत स्वामी, न कीम कीम कीम आए, जन नानक तन कै बल बल जाइए, जेह कट प्रगटी आए, पहरो महला पंजवा, निकट बुझै सो बुरा क्यों करै, बिख संचै नित डरता फिरै, है निकट यार भेद न पाया, बिन सतगुर सा मोही माया, नेड़े नेड़े सब को कहै, गुरमुख भेद बिरला कोल है, रहाओ निकट ना देखै पर ग्रह जाए, दर्ब हिरै मिथ्या कर खाए, पैठ गौरी हर संग ना जानिया, बाज गुरु है परम पुलानिया, निकट ना जाने बोले कूड़, माया मोहे मूठा है मूड़, अंतर वास्तव दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए, जिस मस्त कर्म लिखिया ललाट, सदगुर सेवे खुले कपाट,
ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਟੇ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਵੈ ਕੋਏ, ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਮਾਰੈ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਅੰਤਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਾਵ ਚਿਤਵਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਹੋਵੈ ਜੇ ਕਰੈ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ, ਰਾਖੋ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਨਿਰਭਉ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਤਿਨ ਭਉ ਦੂਰ ਕੀਆ ਏਕ ਪ੍ਰਾਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪਨ ਹੋਏ, ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਦੂਜਾ ਕੋਏ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚੈ।

कर्तार जैसी ऊपर नजर करे करतार ते जन के सब का सवार तिसका राखा को सोए जन नानक पढ़ ना सके कोए पैरो महला पंजवां तौ कड़िया जे होवै बाहर तौ कड़िया जे विसरै नर हर तौ कड़िया जे दूजा पाए क्या कड़िया जा रहा समाए माया मोहे कड़े कड़ पचिया बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ तौ कड़िया जे दूजा करता तौ कड़िया जे अन्याय को मरता तौ कड़िया जे कह जाने नाही क्या कड़िया जा भरपूर समाही तौ कड़िया जे किश होए तिंगाने तौ कड़िया जे भूल रजाने गुर कहया जो होए सब प्रभ ते तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते प्रभ तू है ठाकर सब को तेरा जो पावे त्यों करे निबेरा दुतिया नास्त एक रया समाए राखो पैज नानक सरनाए पैरो महला पंजवा बिन बाजे कैसो निर्तकारी बिन कंठ कैसे गवनहारी जील बिना कैसे बजर बाप नाम बिना बिरथे सब काज नाम बिना कहो को तरिया बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ बिन जेहवा कहाँ को बगता बिन श्रवना कहाँ को सुनता बिन नेत्रा कहाँ को पेख है नाम बिना नर कहीं ना लिख है बिन विद्या कहाँ कोई पंडित बिन अमरा कैसे राज मंडित बिन बुझे कहाँ मन ठहराना नाम बिना सब जग बौराना बिन बैराग कहाँ बैरागी बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी बिन बस पंच कहाँ मन चूरे नाम बिना ससद ही चूरे बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे कहो कैसो ध्यान बिन पै कखनी सर्व बेकार कहो नानक दर का विचार पैरो महला पंजवा हम मैं रोग मानख कौ दीना काम रोग मैंगल बस लीना दृष्ट रोग पचमोए पतंगा नाद रोग खप गए कोरंगा जो जो दिसै सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी रहाओ जेहवा रोग मीन ग्रस यानो

ऐसो हीरा निर्मल नाम जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ। जा की दृष्ट दुखडेरा टह अमृत नाम शीतल मन गह। अनक भगत जाके चरण पुजारी सगल मनोरथ पूर्ण हारी। खिन मैं ऊणे सुबर भरिया खिन मैं सूके कीने हरिया। खिन मैं नथावे कौ दीनो थान खिन मैं निमाणे कौ दीनो मान। सब मैं एक रहा पर पूरा सो जापै जे सतगुर पूरा। हर कीर्तन ताको आधार कहो नानक जिस आप दयार। पैरव महला पंजवा मोहे दुहागन आप सिंगारी। रूप रंग दे नाम सवारी मिट्यो दुखर सगल संताप। गुर होए मेरी माई बाप सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद। कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ। तपत बुझी पूर्ण सब आसा मिटिया देर भय प्रगासा। अनहद शब्द अचरज बिस्माद गुरपूरा पूरा प्रसाद। जा कौ प्रगट भय गोपाल ता कै दर्शन उसदा निहाल। सर्ब गुणा ता कै बहुत निदान जा को सतगुर दियो नाम। जा कौ भेट्यो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना। कहो नानक जो जन प्रभ पाए ता की रेन बिरला को पाए। पैरो महला पंजवा चितवत पाप ना आल के आवै बेसवा भजत किशने शरमावै। सारो दिन समझूरी करै हर सिमरन की वेला बज्जर सिर परै। माया लग पुलो संसार वा पुलाया पुलावन हारै। राच रहया बिरथा व्योहार रहाओ। पेखत माया रंग बिहाए गड़बड़ करै कौडी रंग लाए। अंध व्यवहार बंद मंत आवै करण हार ना जी मैं आवै। करत करत इव ही दुख पाया पूर्ण होत ना कार्ज माया। काम क्रोध लोभ मन लीना तड़फ मुआ ज्यो जल बिन मीना। जिसके राखे होए हरे आप हर हर नाम सदा जप जाप। साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया। पैरों महला पंजवा अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन वसाए। साध शब्द हृदय मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे। राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जपो नित पाई। तार लय सागर संसार रहाओ। जिन कौ लिखिया हर एहो निदान से जंतर गै पावै मान। सुख सहज आनंद गुण गाओ अगै मिलै निथावे थाओ। जुगै जुगंतर एहो तत सार हर सिमरन साचा विचार। जिस लड़ लाए लय सो लागै जन्म जन्म का सोया जागै। तेरे भगत भगतन का आप अपनी महिमा आपे जाप। जी जंत सब तेरे हाथ नानक के प्रभ सदी साथ। पैरव महला पंजवा नाम हमारे अंतर जामी नाम हमारे आवै कामी। रोम रोम रव्या हर नाम सतगुर पूरे कीनो दान। नाम रतन मेरे भंडार अगम्या मोला अपरे अपार रहाओ। नाम हमारा निचल तनी नाम की महिमा सब में बनी। नाम हमारा पूरा साहो नाम हमारा बेपरवाहो। नाम हमारा भोजन पाओ नाम हमारा मन का सुहाओ। नाम ना विसरै संत प्रसाद नाम लै तो अनहद पूरे नाद। प्रभ कृपा ते नाम नौ निद पाई गुर कृपा ते नाम स्यों बन आई। धनवंते सही प्रधान नानक जाके नाम निदान। पैरव महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरे जी प्राण सुखदाता।
तू मेरा ठाकर हूं दास तेरा, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा। कर कृपा करो प्रभदात, तुमरी उस्तत करो दिन रात रहाओ। हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे पिखारी दान दे दातारा। तौ प्रसाद रंग रस माने, घट घट अंतर तुम्हें समाने। तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, साध संग तुमरे गुण गाओ। तुमरी दया ते हुए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विगास। हम बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव। दया करो ठाकुर प्रभ मेरे, गुण गावे नानक नित तेरे। पैरो महला पंजवा, सब ते ऊच जाका दरबार, सदा सदा ताको जोहार। ऊचे ते ऊचा जाका थान, कोट अग्गा मिटे हर नाम। ते सरनाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ। जाके करतब लखे ना जाहे, जाका प्रवासा सब कट माहे। प्रगट भया साधु कै संग, भगता राधे अंदन रंग। दें दे तोट नहीं पंडार, खिन मैं थापो थापन हार। जा का हुक्म ना मेटे कोए, सिर पातशाह साचा सोए। जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमरा तिस ही पासा। राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा। पैरो महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया। बलन बर्तन कौ संबंध चेते आया। बूझ बैराग करे जे कोए, जन मरण फिर सोग न होए। बिखिया का सब तंद पसार, विरले की नोना म्याधार रहाओ। त्रिबद माया रही ब्याप, जो लपटानो ते दू संताप। सुख नाही बिन नाम ते आए, नाम निदान वट पागी पाए। स्वांगी स्यों जो मन री जावै, स्वांग उतारै फिर पछतावै। मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार। एक वस्त जे पावै कोए, पूर्ण काज ताही का होए। गुर प्रसाद जिन पाया नाम, नानक आया सो प्रवान। पैरो महला पंजवा, संत की निंदा जोनी भवना। संत की निंदा रोगी करना, संत की निंदा दुख सहाम। दान दैत निंद कौ जाम, संत संग करै जो बाद। तिन निंदै नाही के साध रहाओ। भगत की निंदा कंध छेदावै, भगत की निंदा नरक पुंचावै। भगत की निंदा गर्भ में गलै, भगत की निंदा राज ते टलै। निंदक की गत कत हूं नाहे, आप भी जापे ही खाहे। चोर जार जुआर दे बुरा, अनहोंदा पार निंदक सिर धरा। पार ब्रह्म के भगत निर्वैर, सो निस्तरै जो पूजै पैर। आद पुरख निंदक पोलाया, नानक कीर्तना जाय मिटाया। पैरो महला पंजवा, नाम हमारे बेदर नाद। नाम हमारे पूरे काज, नाम हमारे पूजा देव। नाम हमारे गुरु की सेव, गुरपूरै दृढ़ो हर नाम। सब ते उत्तम हर हर काम रहाओ। नाम हमारे मजन इशनान, नाम हमारे पूर्ण दान। नाम लैते सगल पवीत, नाम जपत मेरे पाई मीत। नाम हमारे सौन संजोग, नाम हमारे तृप्त सो भोग। नाम हमारे सगले आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार। जाके मन वस्या प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक।
मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जिस देवै नाओ, पैरो महला पंजवा। निरतन कहो तुम देवो तना, अनक पाप जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम, भगत अपने कहो देवो नाम। सफल सेवा गोपाल राय, करण करावन हर स्वामी, ताते बिरथा कोई ना जाए रहाओ। रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मिटाओ प्रभ सोग। निथावे कहो तुम थान बैठावो, दास अपने कहो भक्ति लावो। निमाने कहो जो दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुज्ञान। सगल पयान का पौ नस, जन अपने कह हर मन बस। पार ब्रह्म प्रभ सुख निधान, तत् ज्ञान हर अमृत नाम। कर कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए। पैरो महला पंजवा, संत मंडल में हर मन वसै। संत मंडल में दुर्त सब नसै, संत मंडल में निर्मल दीत। संत संग हुए एक प्रीत, संत मंडल तहां का नाओ, पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ। संत मंडल में जन्म मरण रहे, संत मंडल में जम किशु ना कहे। संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल में नाम वखाणी। संत मंडल का निचले आसन, संत मंडल में पाप विनाशन। संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा। संत मंडल का नहीं विनाश, संत मंडल में हर गुणतास। संत मंडल ठाकर विश्राम, नानक उत्पोत भगवान। पैरो महला पंजवा, रोग कवन जा राखे आप, तेह जन होए ना दुख संताप। जिस ऊपर प्रभ कृपा करे, तिस ऊपर ते काल पर हरे। सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीते आवे ते सदा सुख होवे। निकट ना आवे ता कह जाम रहाओ। जब एहो नासो तब किने उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया। आपे मारा आप जीवल है, अपने भगत को सदा प्रतिपाल है। सब किश जानो तिसके हाथ, प्रमेरो अनाथ को नाथ। दुख पंजनो ता कहे नाओ, सुख पावे तिसके गुण गाओ। सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण तन तुम रह पास। एहो जग तेरा सब तुयते आए, कर कृपा नानक सुख पाए। पैरो महला पंजवा, तेरी टेक रहा कल माहे। तेरी टेक तेरे गुण गाहे, तेरी टेक न पोहे काल। तेरी टेक बिन सह जंजाल, दीन दुनिया तेरी टेक। सब मै रव्या साहेब एक रहाओ, तेरी टेक करो आनंद। तेरी टेक जपो गुरमंत, तेरी टेक तरिये पौ सागर। रखन हार पूरा सुख सागर, तेरी टेक नाही पौ कोए। अंतर जमी साचा सोए, तेरी टेक तेरा मन तान। इहां उहां तू दीवान, तेरी टेक तेरा प्रवासा। सगल ते आवे प्रभ गुणतासा। जप जप आनंद कर है तेरे दासा, सिमर नानक साचे गुणतासा। पहरो महला पंजवा, प्रथमे छोड़ी पराई निंदा। उतर गई समन की चिंदा, लोभ मोह सब कीनो दूर। परम बैसनो प्रपेख हजूर, ऐसो त्यागी विरला कोए। हर हर नाम जपै जन सोए रहाओ। अहं बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग। नाम ते आए हर हर हरे, साज जना कै संग निस्तरे। बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मैं पूर्ण भगवान।
प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया, गुरपुरे हर नाम दरड़ाया, कर कृपा जिस राखे आप, सोई भगत जपै नाम जाप, मन प्रगास गुरते मत लई, कहो नानक तां की पूरी पई, भैरव महला पंजवां, सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही पेखे नित नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखां हर हर गुण गाए, सुख सहज आनंद लहो, साध संगत पाई एवड भागी, गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ, बंधन मात पिता सुदबंता, बंधन कर्म तर्म हो करता, बंधन काटन हार मन वसै, तव सुख पावै निज कर बसै, सब जाचक प्रभ देवन हार, गुण निधान बेअंत अपार, जिसनों कर्म करे प्रभ अपना, हर हर नाम तिने जन जपना, गुर अपने आगे अरदास, कर कृपा पुरख गुणतास, कहो नानक तुमरी सरनाई, जो पावे त्यो रखो गुसाई, पैरो महला पंजवां, गुरमिल त्याग्यो दूजा पाओ, गुरमुख जप्यो हर का नाओ, बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, कर कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए रहाओ, रोग दोख गुर शब्द निवारे, नाम औखद मन भीतर सारे, गुर भेटत मन पया आनंद, सर्व निदान नाम भगवंत, जन्म मरण की मिटी जमत्रास, साध संगत ऊंद कमल विगास, गुण गावत निचल विश्राम, पूर्ण होए सगले काम, दुलभ देह आई परवान, सफल होई जप हर हर नाम, कहो नानक प्रभ कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरी, पैरव महला पंजवां, सब ते उच्चा जा का नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसै मन आए, सिमर मना तू साचा सोए, हलत पलत तुमरी गत होए रहाओ, पुरख निरंजन सृजनहार, जी जंत देवै आहार, कोट खते खिन बख्शनहार, भगत पाए सदा निस्तार, साचा तन साची वड्याई, गुरपूरे ते निश्चल मत पाई, कर कृपा जिस राखन हारा, तां का सगल मिटै अंधियारा, पार ब्रह्म स्यो लागो ध्यान, पूर्ण पूर रहो निर्वाण, भ्रम पाओ मेट मिले गोपाल, नानक कहो गुर पहे दयाल, पैरो महला पंजवां, जिस सिमरत मन होए प्रगास, मिटै कलेस सुख सहज निवास, तिसै प्राप्त जिस प्रभ दे, पूरे गुर की पाए सेव, सर्व सुखां प्रभ तेरो नाओ, आठ पहर मेरे मन गाओ रहाओ, जो इच्छा सोई फल पाए, हर का नाम मन वसाए, आवन जान रहे हर त्याए, भगत पाए प्रभ की लिवलाए, बिन से काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार, प्रभ की टेक रहे दिन रात, पार ब्रह्म करे जिस दात, करण करावन हार स्वामी, सगल कटां के अंतरजामी, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए, पैरव महला पंजवां, लाज मरै जो नाम ना लेवै, नाम बिहून सुखी क्यों सोवै, हर सिमरन शाड परम गत चाहै, मूल बिना साखा कत्या है, गुर गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारै, बंधन काट हर संग मिलाए रहाओ।
तीर्थ नाए कहां सोच सैल, मन को व्यापै हो मैं मैल। कोट कर्म बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल। बिन खाए बुझे नहीं भूख, रोग जाए ता उतरै दुख। काम क्रोध लोभ मोहे व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया। तन तन साध तन हर नाओ।

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मै लय दीन दयाल सदा कृपाल बिरस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिर मैं बिरस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रख नहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक औसदा प्रतपार है पगजना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जमते राखै देकर हाथ निर्मल शोभा निर्मल रीत पार ब्रह्म आया मन चीत कर कृपा गुरदीनो दान नानक पाया नाम निदान पैरव महला पंजवा करण कारण समर्थ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै पंजन अबनासी राय दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सतगुर चरना रहाओ पूर्ण काम मिले गुरदेव सफल दाता निर्मल सेव कर गहलीने अपने दास राम नाम रिद्धियो निवास सदा आनंद नाही के सोग दुख दर्द न व्यापै रोग सब किश तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुर अगम अपार निर्मल सोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किश प्रभ ते होए पैरव महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूर्ण करने आठ पहर गावत भगवंत सतगुर दीनो पूरा मंत सोवट भागी जिस नाम प्यार तिसकै संग तरै संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरै एक सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी सो पतवंता जे आप पिछानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रहन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण रिदमाहे निवासा कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा सो जनाया प्रभ की सरना आप पवित पावन सब कीने राम रसायन रसना चीने पैरो महला पंजवा नाम लै तो किश बिघ ना लागे नाम सुन तो जम दूरों भागे नाम लै तो सब दुख है नास नाम जप तो हर चरण निवास निर्विघ्न भगत भज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ हर सिमरत किस चाख ना जो है हर सिमरत दैत देव ना पो है हर सिमरत मोह मान ना बदै हर सिमरत गर्भ जो ना रुदय हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बहु माया केला जात अजात जपै जन कोए जो जपै तिसकी गत होए हर का नाम जपिए साध संग हर के नाम का पूर्ण रंग नानक कहो प्रभ कृपा तार सा सा सर देहो चितार पैरो महला पंजवा आपे सास्ते आपे भेद आपे कटकट जाने भेद ज्योत स्वरूप जाकी सब वत करण कारण पूर्ण समरथ प्रभ की ओट गहो मन मेरे चरण कमल गुरमुखिया राधाओ दुश्मन दुख न आवे नेरे रहाओ आपे वन त्रिण त्रिपवन सार जाकै सूत परोया संसार आपे शिव शक्ति संजोगी आप निर्बाणी आपे भोगी जत कत पेखो तत तत सोए
ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਵਸ ਜਾ ਕੈ, ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਜਨਤਾ ਕੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਹੀ ਜਨ ਧਨ। ਪਹਿਰਾਓ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ, ਅਸਥਿਤ ਭਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਚਿੰਦ। ਭੈ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨਸ ਗਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ ਰਹਾਓ। ਧਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਜੁਗਤ ਗੋਪਾਲ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥ। ਹਰ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਸਰ ਸਮਾਲੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਬੰਧ ਨਰਾਇਣ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਇਣ, ਤਿਸ ਕੀ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮਨ ਜੋਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਪ੍ਰਖਾਰਥ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥ। ਪਹਿਰਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪੜਿਆ, ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਗਲ ਬਿਆਦ, ਮਿੱਟੀ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਕੀ, ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਤਿਨਕੋ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ, ਜਨ ਕਾ ਦਰਸ ਬਾਂਛੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾਮ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਨਿੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ।

सो सुरतान जो दोए सरतान है, बाहर जाता पीतर यान है, गगन मंडल में लश्कर करे, सो सुरतान शत्र सर तरे, जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचरे, मुसलमान का एक खुदाए, कबीर का स्वामी रया सुमाए, महल्ला पंजवा, जो पाथर को कहते देव ताकि व्यर्था हो वैसे व, जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए, ठाकर हमरा सदवो लंता, सर्व जिया को प्रभ दान देता रहा, अंतर देव न जाने अंध, भ्रम का मोहया पावे फंद, ना पाथर बोले ना किश दे, फोकट कर्म ने फल है सेव, जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे, जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई, कहत कबीर हाँ कहो पुकार, समय देख सकत गावार, दूजे पाए बहुत कर गाले, राम भगत है सदा सुखाले, जल में मीन माया के बेदे दीपक।

आई। रहाओ पंखी मृग माया मैराते, साकर माखी अधिक संतापे, तुरे उष्ट माया मैं पेला, सिद्ध चौरासी माया मैं खेला, छे जति माया के बंदा, नवे नाथ सूरजर चंदा, तपे रखीसर माया मैं सूता, माया मैं काल यार पंच दूता, स्वान स्याल माया मैं राता, बंतर जीते अर सिंघाता, मांजार गाडर अर लुबरा, बिरख मूल माया मैं परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा यार तार तेव, कह कबीर जैसे उधर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभु काज सवार आए, ऐसा ज्ञान विचार मना, हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ, जब लग सिंह रह बन माहे, तब लग बन फूले ही नाहे, जब ही स्यार सिंह को खाए, फूल रही सगली बन राए, जीतो बूढ़े हार उतरे, गुर प्रसादी पार उतरे, दास कबीर कहे समझाए, केवल राम रहो लिवलाए, सत्तर सह सला रह जाके, सवा लाख पै काम बरता के, सेख जो कही है कोट अठासी, छप्पन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे, मजरस दूर मैल को पावे, रहाओ तेतीस करोड़ी है खेल खाना, चौरासी लख फिर दीवाना, बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई, उन पी पिस्त कनेरी पाई, दिल खल हल जाके जर्द रूबानी, छोड़क तेब करे सैतानी, दुनिया दोस रोस है लोई, अपना किया पावे सोई, तुम दाते हम सदा पिखारी, देव जवाब होए बजगारी, दास कबीर तेरी पने समाना, पेस्तन जीक राख रह माना, सब कोई चलन कहत है उहा, ना जानो बैकुंठ है कहां, रहाओ आप आपका मर्म ना जाना, बात नहीं बैकुंठ बखाना, जब लग मान बैकुंठ की आस, तब लग नाही चरण निवास, खाई कोट ना परलप गारा, ना जानो बैकुंठ द्वारा, कह कमीर अब कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे, क्यों लीजे गढ़ बंका पाई, दोवर कोटियार तेवर खाई, रहाओ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी प्रबल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रगराया, काम केवारी दुख सुख दरवानी, पापुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर, तै मनमावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद कमान चढ़ाई, तसना तीर रहे गढ़ पीतर, इं गढ़ लियो न जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे परजाली, एक चुट सजाया, सत संतोख लै लरने लागा, तोरे दो दरवाजा, साध संगत गुर की कृपा।

अंतर्यामी प्रभ दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोह देहो दान, जप जीवे नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां, राम रंग सब गए पाप, राम जप तो कछ नहीं संताप, गोविंद जप तो समट अंधेर, हर सिमर तो कछ नाए फेर। बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जह गोविंद भगत सो तन देस, हर भगतहीन उदयान थान गुर प्रसाद।

अरहाओ जोगी जंगम अर संन्यास सभी पर डारिये फास जेह जे अर को नाम समार ते पवसागर उतरे पार जन नानक हर की शरणाए दीजे नाम रह गुण गाए बसंत महला नावा माई मैं धन पायो हर नाम मन मेरो धामन ते छूटो कर बैठो विश्राम रहाओ माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान लोभ मोए परसना साकै गही भगत भगवान जन्म जन्म का संसार चूकार तन नाम जप पाया तृष्णा सकल विनाशी मनते नहीं सुख माए समाया जा कहो दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावै कहो नानक बिद की संपै को गुरमुख पावै बसंत महला नावा मन कहां बिसार्यो राम नाम तन बिनसै जम स्यो परे काम रहाओ एहो जग तुए का पहार तैं साचा मानिया के विचार तन दारा संपत गृह कै संग न चालै समझ लेहे एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग बसंत महला नावा कहां पूले ओरे झूठे लोभ लाग कश बिगड़ियो नाहन अजो जाग रहाओ सम सुपने कहो जग जान बिन सह शरमै साची मान संग तेरे हर बस्त नीत निस्बासर पाइता है मीत बार अंत की होए सहाए कहो नानक गुणता के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ नाम नहीं चीत नाम बिसार ग्रह देख पीत मनुआ डोलै चीता नीत जग स्यों तूटी झूठ प्रीत काम क्रोध बिख बज्र भार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ कार बालू का कुमन केर बरखस बाणी बुद्ध बुदा हेर मात्र बूंद ते तार चक फेर सर्ब जोत नामे की चेर सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पगला गौ तोर नाम रता चाहो तुझे और नाम दुराए चले सो चोर पत खोई बिखियंचल पाए साच नाम रतो पास्यों कर जाए जो किशकीनस प्रभर जाए पै मान निरपो मेरी माए कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग खिले बिकसै ते तो सोग प्रभ शरणागत कीनस होग कापड़ पहरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप बेकार आसा मनसा बांधो बार नाम बिना सुना कर बार गाचो पुत्री राजकुमार नाम पणो सच दोत सवार प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिखत्यास निवास गुर शब्दी बिखत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तोहे नानक ठांडे चाहे प्रभु दयार तेरे नाम संतोखे कृपा धार बसंत महला पहला मन भूलो परमस आए जाए अत लुब्ध लुबानो बिखुमाए नय असर दी सहक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए मन भूलो समझ सो साच नाए गुर शब्द बिचारे सहज पाए रहाओ मन भूलो परमस पवरतार बिल बिरथे चाहे बहु बेकार मैंगल ज्यो फासस कामहार कड़बंधन बांध्यो शीस मार मन मुग्धो दादर भगतहीन दर प्रहट सरापी नाम बीन ता कै जात ना पाती नाम लीन सब दुख सखाई गुण है बीन मन चले न जाई ठाक राख बिन हर असराते पत ना साख
ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪ ਰਾਖ, ਧਰ ਧਾਰਨ ਦੇਖੈ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸ ਕਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੇਲੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਮਾਏ। ਅਵਗਣ ਛੋਡੋ ਗੁਣ ਕਮਾਏ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਕੱਢੈ ਧੋਏ। ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ।

मन मंगल गुण गावत रहाओ, विषम पई पेख विषमादि पूर रहे कृपावत, पियो अमृत नाम अमोलक ज्यो चाख गुंगा मुस्कावत। जैसे पवन बंद कर राखे ओ बूझ ना आवत जावत, जाको हृदय प्रगास पयो हर उवा की कही ना जाए कहावत। आन्यो पाव जेते किश कहिए तेते सीखे पावत, अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगटयो अगम जैसे प्रखावत। निर्गुण निरंकार अवनाशी तुल्लो तुल्यो ना जावत, कहो नानक अजर जिन जरिया तिस ही कहो बनयावत। सारंग महला पंजवा बिखई दिन रैन इवही गुदार, गोविंद ना भजे अहम बुद्ध माता, जन्म जुवे ज्यों हारै रहाओ। नाम अमोला प्रीत ना तेस्यो पर निंदा हितकार, छापर बान सवारै तरण को द्वारै पाप गजारै। काल रिपोर्ट उठावै मुंडै अमृत मंते डारै, ओडै बस्त्र काजर मैं परया बहुर बहुर फिर चारै। काटै पेड़ डाल पर ठंडो खाए खाए मुस्कारै, गिरो जायर सातल परयो छिटी छिटी सिर पारै। निर्वैरै संग वैर रचाए पहुंच न सकै गवारै, कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है। सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया, एक सुधाखर जाकै हृदय वसिया तिन बेदै तत पछानिया रहाओ। परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पिचारा, जौ लौर दै नहीं प्रगासा तौ लोवंद अंधारा। जैसे धरती साधे बहु बिद बिन बीजे नहीं जामै, राम नाम बिन मुक्त ना हुई है तुटै नाही अभिमानै। नीर बिलोवै अत श्रम पावै नैनू कैसे रीसै, बिन गुर भेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसै। खोजत खोजत है बिचार्यो सर्व सुखा हर नामा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त जाकै लेख मथामा। सारंग महला पंजवा अन दिन राम के गुण कहिए, सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांशत फल लहिए रहाओ। आवो संत प्राण सुखदाते सिमरै प्रभ अबनासी, अनाथै नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो कटवासी। गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड पागे, कल कलेस मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे। काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे, मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे। तू समर्थ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा, पूर रहो सर्व मैं ठाकर नानक सो प्रभ नेरा। सारंग महला पंजवा बलिहारी गुरदेव चरण जाकै संग पार ब्रह्म त्याई है, उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग पै सगल बिनासे जो आवै हर संत सरण, आप जपै अवरै नाम जपावै वड़ समर्थ तारन तरन। जा को मंत्र उतारै सहसा ऊने को सुभर भरन, हर दासन की आग्या मानत ते नाही फुन गर्भ परन। भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म वरन, जाको पयो कृपाल बीठला तन हर हर अजर जरन। हर रसै गाने सह समाने मुक्ते नाही जात बरन, गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उदरन। सारंग महला पंजवा गायो री मैं गुणित मंगल गायो, भले संजोग भले दिन अवसर जौ गोपाल रिजायो रहाओ। संत चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत तरे हाथा, साधे मंत्र मोर लो मनुआ ताते गत होए त्रै गुनिया। भगत दर्श देख नैन रंगा लोभ मोह टूटे भ्रम संगा, कहो नानक सुख सहज आनंदा खोल पीत मिले परमानंदा। सारंग महला पंजवा कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद, कैसे कहो मोहे जी बेदनाई दर्शन प्यास प्रे प्रीत मनोहर, मन ना रह बहुबिद उमकाई रहाओ। चितवन चितवो प्रे प्रीत बैरागी कद पावो हर दरसाई,
ਜਤਨ ਕਰੋ।

जैसा करे कहावे तैसा, ऐसी बनी जरूरत। होवे लिंग चिंग न होवे, ऐसी कही है सूरत। जो उस इच्छे सो फल पाए, ता नानक कही है मूर्त पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है, अमृत रस फलिया। जिस प्राप्त सो लहै, गुर शब्दी मिलिया। सतगुर कै पाणे जो चलै, हर सेती रलिया। जम काल जोहे न सकई, कर चानन बलिया। नानक बख्स में लायान, फिर गर्भ ना गलिया। श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीर्थ, ज्ञान ध्यान इशनान। दया देवता खिमा जप माली, ते मानस प्रधान। जुगत धोती सुरत चौका, तिलक करनी होए। पाओ पाओ जुन नानका, विरला ता कोई कोए। महला तीजा, नौमी नेम सच जे करे, काम क्रोध तृष्णा उचरे। दसवीं दसे द्वार जे ठाके, एकादशी एक कर जाने। द्वादशी पंच वसगत कर राख, तौ नानक मन माने। ऐसा वर्त रही जय पांडे, होर बहुत सिख क्या दीजे। पौड़ी भुगत राजे रंग राय, संचय विख माया। कर कर हेत वधाए दे, पर दर्प चुराया। पुत्र कलत्र ना विस है, बहुप्रीत लगाया। वेख दिया ही माया तुहे गई, पछता पछताया। जम दर बदे मारी है, नानक हर पाया। श्लोक महला पहला। ज्ञान में हुना गावे गीत, भुखे मुला करे मसीत। मखटू होए कै कन पढ़ाए, फकर करे होर जात गवाए। गुरपीर सदाए मंगन जाए, ता कै मूल न लगी है पाए। काल खाए किश हथों दे, नानक राहो पछाणे से। महला पहला। मनो जे अंधे कूप, कहया बिरद ना जाननी। मन अंधे उंधे कवल, दिसन खरे करूप। एक कह जान कहया बुजन, ते नरसुर स्वरूप। एक ना नादना बेदना गी रस, रस कस ना जान अंत। एक ना सुध ना बुध ना अकल सार, अखर का प्यो ना लहंत। नानक से नर असल खार, जे बिन गुण गर्भ करंत। पौड़ी गुरमुख सब पवित है, तन संपै माया। हर अर्थ जो खर्च दे, देंदे सुख पाया। जो हर नाम ते आए दे, तिन तोट ना आया। गुरमुखा नदरी आमदा, माया सुट पाया। नानक भगता होर चेतना आवई, हर नाम समाया। श्लोक महला चौथा। सतगुर सेवन सेवट भागी, सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी। ग्रह कुटाम मैं सहज समाधि, नानक नाम रते से सच्चे बैरागी। महला चौथा। गणत सेवना हो वई, कीता थाए ना पाए। शब्द साधना आयो, सच ना लगो पाओ। सतगुर प्यारा ना लगे, मन ठिया वह जाए। जे एक विख अगाहां भरे, ता दस विखा पिछाहां जाए। सतगुर की सेवा चाकरी, जे चले सतगुर पाए। आप गवाए सतगुरु नो मिले, सहजे रह समाए। नानक तिना नाम ना विसरै, सच्चे मेल मिलाए। पौड़ी खान मलूक कहाए दे, को रहन ना पाई। गढ़ मंदिर गच गिरिया, किछ साथ ना जाई। सोयन साखत पौन वेग, त्रिग त्रिग चतराई। छति अमृत प्रकार करै, बो मैल वधाई। नानक जो देवै तसे ना जाननी, मन मुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, देसंतर पव थके पेख तारी। दूजे पाए ना कदे ना पाए, न दुख लागा अत पारी। मूर्ख अंधे त्रै गुण सेवै, माया कै ब्योहारी। अंदर कपट उधर भरन कै ताई, पाठ पढ़े गवारी। सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिन हमें विचों मारी। नानक पढ़ना गुणना एक नाव है, बुझे को बिचारी। महला तीजा। नांगे आवना नांगे जाना, हर हुक्म पया क्या कीजे।
ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਕਿਸੈ ਸਿਉ ਕੀਜੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਨਾਨਕ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਲਾਇਓ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ। ਪੌੜੀ ਗੜਕਾਇਆ ਸਿੰਗਾਰ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਣਾਈ, ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਕਤੀਫਿਆ ਪੈਰੈ ਤਰਮਾਈ। ਲਾਲ ਸੁਪੇਦ ਦੁਲੀਚਿਆ ਬਹੁ ਸਭਾ ਬਣਾਈ, ਦੁੱਖ ਖਾਣਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਗਰਬੈ ਗਰਬਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮਨਾ ਚੇਤਿਓ ਅੰਤਲੈ ਛਡਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਸੁਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ, ਆਪੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਲਈ ਗੱਲ ਲਾਏ। ਦੁਬਦਾ ਚੁੱਕੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਸੇ ਕੰਠ ਲਾਏ ਜੇ ਭੰਨ ਕਢਾਏ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਤੁਰ ਮਿਲੇ।

पौड़ी। लेखा पढ़िए हर नाम फिर लेखना होई, पुछ न सके कोय हर दर सद ढोई। जम काल मिला दे भेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई। नानक अनहद धुनी दर वज दे मिलया हर सोई।

जाओ। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार कर मुसबिरानो, पेट भरे अपराधी, जेह पर लोग जाए अपकीर्त, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली। शाड मानो हर बिमुखन को संग, सारंग महला पंजवां, सूरदास एको अंकार सतगुर प्रसाद। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो, आनंद सहज धुन चोक रहाओ। दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यों काज ना कछु है, सुंदर बदन्या लोक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, जो कुष्टी तन जोक, सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, दीनो इहो परलोक। सारंग कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बंता, हित लागो सब फन का रहाओ। आगे कहो किस तुल्हा बंद हो, क्या परवासा तन का, कहां बिसासा इस भांडे का, इतनक लागे ठन का। सगल धर्म पुन फल पावहो, तूर बांछो सब जन का, कह कबीर सुनोरे संतो, एहो मन उडन पंखेरू बन का। राग मलार चौप दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना, खसम विसार खुवारी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवो, अपनी पासेती कर जावो रहाओ। तुदनो सेव है तुझ क्या देव है, मांगे ले वह रह नहीं, तू दाता जिया सबना का, जिया अंदर जियो तुही। गुरमुख त्यावै से मृत पावै, से ही सुचे हो ही, अहनिस नाम जपोरे प्राणी, मैले हच्छे हो ही। जेही रुत काया सुख तेहा, तेहो जेही देही, नानक रुत सुहावी साई, बिन नाम है रुत के ही। मलार महला पहला, करो बिनो गुरे अपने प्रीतम, हर वरे आन मिलावै, सुन कन कोर शीतल मन मोरा, लाल रती गुण गावै। बरस घना मेरा मन पीना, अमृत बूंद सुहानी ही आरै, गुरमोही मन हर सलीना रहाओ। सहज सुखी वर कामन प्यारी, जिस गुर बचनी मन मानिया, हर वर नार भई सुहागण, मंतन प्रेम सुखानिया। अवगण त्याग भई बैरागण, आस्तर वर सोहाग हरी, सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै, हर प्रभ अपनी कृपा करी। आवन जान नहीं मन निर्मल, आवन जान नहीं मन निचल, पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख, तन सुहागण सच सही। मलार महला पहला, साची सुरत नाम नहीं तृप्ते, हों मैं करत गवाया, पर तन पर नारी रत निंदा, बिख खाई दुख पाया, शब्द चीन पै कपट ना छूटे, मनमुख माया माया। अजगर पार लदे अत भारी, मर जन्मै जन्म गवाया, मन पावै शब्द सुहाया। भ्रम भ्रम जोन पेख बहु कीने, गुर राखे सच पाया रहाओ। तीर्थ तेज निवार ना नाते, हर का नाम ना पाया, रतन पदार्थ पर हर त्याग गया, जत को तत ही आया। बिष्टा कीट पय उतही ते, उतही महे समाया, अधक स्वाद रोग अधकाई, बिन गुर सहज नाम पाया। सेवा सुर तो रहस गुण गावा, गुरमुख ज्ञान बिचारा, खोजी उपजय बादी बिनसै, हम बल बल गुर करतारा। हम नीच होते हीन मत झूठे, तू शब्द सवार नहारा, आत्म चीन तहा तू तारण, सच तारे तारनहारा। बैस सुथान कहां गुण तेरे, क्या क्या कथो अपारा, अलख न लखिए अगमा जोनी, तू नाथा नाथनहारा। किस पै देख कहो तू कैसा, सब जाचक तू दा तारा, भगतहीन नानक दर देखो, एक नाम मिले उर तारा। मलार महला पहला, जिन तन पिर का साधना जानिया, सा बिलख बदन कुमलानी, पई निरासी कर्म की फासी।
ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੀ ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹਾਓ ਨਵ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਆਂਦਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ ਮੁਕਤ ਭਏ ਗੁਰਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਭਗਤ ਸੁਭਾਵੀ ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਹਰ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुन लावो पोग हर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी ओ आया तौ मैं सब सुख पाए। संत सभा उठ गुरपूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लाग आए। मलार महला पंजवा खीरा धार, बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता भूलै बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी, नव निद नाम निदान ग्रह तेरा मन बांछै सो लैसी। पिता कृपाल आग्या हे दीनी बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा सगल विधि जो रिया हर करया, तजो सगलां देसा कार्य सगल अरंभ्यो घर का ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया, मीत सजन मेरे पए सुहेले प्रभ पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पए आनंदा गुर कार्ज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमै बो जोनी टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंघै कत सागर बिरथा कथत हम तरते। शिव बिरंच असुर सुर जेते काल अग्न मैं जरते, नानक सरन चर

हराओ सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कह तकिया सचै तान, नाम समारस रूड़ी बाण, थै पावे दरलै स्पिराण। ऊंडा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना उच्ची तार, निज करवासा तह मगना चल नहार। जित कर वसै तू है बिद जाने, बीजो महल ना जापै, सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग दग ब्याशा पै। करण पलाव करै बिल लातो, बिन गुर नाम ना जापै, पल पंकज मैं नाम छडाए, जे गुर शब्द संजापै। एक मूर्ख अंधे मुगद गवार, एक सतगुर कह पै नाम आधार, साची बाणी मीठी अमृत तार, जिन पीती तिस मुख द्वार। नाम पै पाए हृदय वसाही, गुर करनी सच बाणी, इंद वरसै तरत सुहावी, कट कट जोत समाणी। कालर बीजस दुरमत ऐसी, निगुरे की निशानी, सतगुर बाजो कोर अंधारा, डूब मोए बिन पानी। जो किश कीनो सो प्रभु रिजाए, जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए। हुक्मे बांधा कार कमाए, एक शब्द रचै सच समाए। चहो दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा, चहो दिस नाम पतालं। सब मैं शब्द वरतै प्रभ साचा, कर्म मिलै बयालं। जामन मरना दिसै सिर उबो, खुदया निंद्रा कालं। नानक नाम मिलै मन पावै, साची नदर रसालं। मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार ना जानै, कंठे बैठी गुर शब्द पछानै। तू कैसे आड़ फाथी जाल, अलख ना जा चर दै समाल। रहाओ एक जी कै जिया खाही, जल तरती बूढ़ी जल माही। सर्व जी की ये प्रतपानी, जब पकड़ी तब ही पछतानी। जब गल फास पड़ी अत पारी, ऊंडना सांकै पंख पसारी। रस चूगै मन मुख गावार, फाती छूटै गुण ज्ञान विचार। सतगुर सेव टूटै जमकाल, हृदय साचा शब्द संभाल। गुरमत साची

मासो ही मासी उपजै मासो सबो साक सतगुर मिलिया हुक्म बुझिया ताको आवै रास आप छुटे न छुटी नानक बचन विनाश महला पहला। मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने कौन मास कौन साग कहावे किसमें पाप समाने। गेंडा मार होम जग किए देवत्यां की बाणे मास छोड़ बैस नक पकड़े राती मान सखाने। फड़ कर लोका नो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे नानक अंधे से क्यों कहिए नानक अंधे से ओ क्या कहिए कहे न कहे आबूजे। अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही मात पिता की रक्त निपन्ने मच्छी मास ना खाही। स्त्री पुरख है जानिस मेला उथे मंद कमाही मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे। ज्ञान ध्यान का सूझै नाही चतर कहा वह पांडे। बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा जी जंत सब मासो होए जी लया वासेरा। अपख पख पख तज छोड़ अंध गुरु जिन केरा मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे। ज्ञान ध्यान कछ सूझे नाही चतर कहा वै पांडे। मास पुराणी मास कते भी चह जुग मास कमाना जज काज भी आहे सुहावे उथे मास समाना। स्त्री पुरख निपजै मासो पातशाह सुल्ताना जे ओए दिसै नरक जांदे ता उनका दान ना लैना। देंदा नरक सुर्ग लैंदे देखो एह तिंगाना आप न बुझै लोक बुझाए पांडे खरा सियाणा। पांडे तू जाने ही नाही किथों मास्यो पन्ना तोयो अनक मादक पाहा तोयो त्रिपवन गन्ना। तो वा आखे हाँ बो विधाचा तो वै बहुत बेकारा एते रस छोड़ हो वै सन्यासी नानक कह विचारा। पौड़ी हाउ क्या आखा एक जीव तेरा अंतरा किन्ही पाया सच्चा शब्द विचार से तुझी माए समाया। एक भगवा वेशकर परम देवन सतगुर के ना पाया दे दिसंतर पव थके तुद अंदर आप लुकाया। गुर का शब्द तन है कर चानने आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमती सच समाया आवा गुण बजारिया बाजार जिनी रचाया। एक थिर सच्चा सलाहना जिन मन सच्चा पाया सलोक महला पहला। नानक माया कर्म बिरख फल अमृत फल वेस सब कारण करता करे जिस खवाले तिस महला दूजा। नानक दुनिया किया वड़ियाइया अग्गी से तीजाल इनी जली ना विसारे आयक ना चलिया नाल। पौड़ी सिर सिर होए नबेड़ हुक्म चलाया तेरे हथ नबेड़ तू है मन पाया। काल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाना कन चढ़िया नचसी सतगुर बोथ बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे पड़हार अंदर पक्षी। फाथा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सहोग कून निखुटसी। सलोक महला पहला। घर मैं घर दे खाए दे सो सतगुर पुरख सुजान पंच शब्द तुन कार तुन तह बाजै शब्द निशान। दीप लो पाताल तह खंड मंडल हैरान तार कोर बाजंतर तह साज तख्त सुल्तान। सुख मन कै कर राग सुन सुन मंडल लिव लाए कथ कथा बिचारी है मनसा मन समाए। उल्ट कमल अमृत भरिया एहो मन कतो ना जाए अजप्पा जापना।

अब विपर प्रधान ते कर दंडौत तेरे नाम शरण आए रविदास दासा। मलार हार जपत तेउ जना पद्म कवलास पात ता सम तुल नहीं आन को एक ही एक अनेक होए बिस्थरे ओ आन रे आन पर पुरुषो रहाओ। जा कै भागवत लेखी है अवर नहीं पेखी है तास की जाता शोप शिपा ब्यास मैं लेखी है सनक मैं पेखी है नाम की नाम ना सप्त दीपा। जा कै ईद बकरीद कुल गौरे बद करे मानिए सेख शहीद पीरा। जा कै बाप वैसी करी पूत ऐसी सरी तिहू रे लोक प्रसिद्ध कबीरा। जा के कुटुंब के ढेड़ सब ढोर ढोवंत फिरै अजो बनारसी आस पासा। आचार सहत बिपर करहत डंडौत तिन तनै रविदास दासान दासा। मलार एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगते साल संगत पाई परम गते रहाओ। मैले कपरे कहां लो धोवो आवेगी नींद कहां लग सोवो। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो झूठे बनज उठ ही गई हटियो। कहो रविदास भयो।

हेलो हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता मेरे मन तन जी हर हरे हरे राम नाम तन माल जाको भाग तिन लियो री सुहाग हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत हौ बलबले हौ बलबले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानला महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी कीचै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो कृपीस रहाओ हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जन राम जप ते उत्तम तिन कहो हौ कुम कुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करै जे तुद पावीस जन नानक अमृत पिया गुरमती तन तन तन तन तन गुरु साबीस कानड़ा महला चौथा पज राम मन राम जिस रूप ना रेख वडाम सतसंगत मिल पज राम बढ़ हो पाग मथाम रहाओ जित ग्रह मंदर हर होत जास तित कर आनंदो आनंद पज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम उपदेश गुरु गुर सतगुरा सुख होत हर हरे हर हरे हरे पज राम राम राम सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता सब तू तू तू राम राम राम जन नानको शरणागति देहो गुरमति पज राम राम राम कानड़ा महला चौथा सतगुर चट पग चाट जित मिल हर पादर बाट पज हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख ना पाईऐ हर ब्रह्म जोग हर पाईऐ सतसंगति उपदेश गुरु गुर संत जना गुर खोल खोल कपाट तू अपरंपर स्वामी आता गाहा तू भरपुर रया जल थले हर एक एको एक एक है हर थाट तू जाने सब विद बूझै आपे जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे कट हर काट कानड़ा महला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर आगा दो मत गुरमत हर प्रभ लादो तुर हो लिखे लिला दो रहाओ बिख माया संच बहु चितै बिकार सुख पाइये हर पज संत संत संग दी मिल सत गुरु गुर साधो ज्यो शोहे पारस मनूर पए कंचन त्यों पतत जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधादो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार वर्ण चार आश्रम है कोई मिले गुरु गुरु नानक सो आप तरै गुर सगल तरा दो कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो कृपान रहाओ तेरे जन त्यावे एक मन एक चित ते साधु सुख पावे पज हर हर नाम निधान उस्त करह प्रभ तेरिया मिल साधु साजना गुर सतगुरु भगवान जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर

स्वामी ने रो पेखत सुनत सबन कह संगे थोरे काज ब्रो कह फेरो रहाओ नाम बिना जेतो लपटायो कछु नहीं नाही कछ तेरो आगे दृष्ट आवत सब प्रगट इहा मोहयो परम अंधेरो अटक्यो सुत बनता संग माया देवनहार दा तार बसेरो कहो नानक एक है पारो सौ बंधन काटन हार गुरमेरो कानड़ा महला पंजवा बिखै दल संतन तुमरै गाहयो तुमरी टेक भरोसा ठाकरो शरण तुम्हारी आयो रहाओ जन्म जन्म के महाप्राहित दर्शन भेट मिटाहयो पयो प्रगास अन दुजियारा सहि समा समाहयो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समर्थ अथाहयो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लाहयो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप धीरै बिनसै मोह परम दुख पीरै रहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत कत पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेड़त नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मनै सुख पाई है साज जना मिल हर जस गाई है रहाओ कर कृपा प्रभुदय बसेरो चरण संदर के माथा मेरो पार ब्रह्म को सिमरो मना गुरमुख नानक हर जा सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रपरसन रसना हर हर भोजन तृप्तानी अखियन को संतोख प्रभ दर्शन रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम कल मल दोग सगल मल हरसन पावन तावन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन शरण गही पूर्ण अबनासी आनो पाव थकत नहीं करसन कर गए लिए नानक जन अपने अंध घोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा कोह कत कपट खपट खल गरजत मरजत मीच अनक बरिया रहाओ अहं मत अन रात कुमित हित प्रीतम पेखत भ्रम लाह गरिया अनित व्यवहार आचार विदहीनत मम मद मात कोप जरिया करण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान रहाओ गोबिंद त्याग आन लागे अमृतो डार भूम पागे बिखैरा स्यो आसक्त मूड़े काहे सुखमान काम क्रोध लो व्याप्यो जन्म ही की खान पतत पावन शरण आयो उधर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अवलोको राम को मुखार बिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज तन परवार मेरा सर्ब सो गोबिंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूज हो नाम आराद गुर सतगुर चरनी लाग हर पाव मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहुविद खोजी सा पूजा जे हर पावास माटी की यह पुत्री जोरी क्या है कर्म करा कमास प्रभां पकर जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूजे एक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हाँ बल बल सत बल जास कानड़ा महला पंजवा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगते उदारण नाम प्रे तेरे नवनिध नाम निधान हर के रह हर रंग रंग रंग अनूपे रह काहे रे मन मोहे मगने रह नैनो देख सा दर्शे रह सो पावे जिस लिखत लले रह रहाओ सेवा सेवो सेवो साध संत चरने रह बांछो तूर पवित्र करे रह अठ सठ मज्जन मैल कटे रह सास सास ते आवो मुख नहीं मोरै
किछ संग ना चाले लाख करोर है, प्रभ जी को नाम अंत पकरोर है, मनसा मान

मत उत्मा गुर सतगुर कै पग पाहा। सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत राह। जन नानक कहो हर बख्श लहो हर तुठै मेल मिलाह। हर कृपा कर सुन बेनती हम पापी कर्म तराह। महला चौथा हर करहो कृपा जग जीवना गुर सतगुर मेल दयाल। गुर सेवा हर हम पाइया हर होवा हर कृपाल। सब आसा मनसा विसरी मन चूका आल जंजाल। गुर तुठै नाम दृढ़ाया हम किए शब्द निहाल। जन नानक अतुट तन पाया हर नामा हर तन माल। पौड़ी हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे सब उपर वड्डे वडोना। जो त्यावै हर अपरंपर हर हर हर त्याय हरे ते होना। जो गावै सुनै तेरा जस स्वामी तिन काटे पाप कटोना। तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना। सब त्यावो आद सत्ते जुगाद सत्ते परतख सत्ते सदा सदा सत्ते। जन नानक दास दसोना। श्लोक महला चौथा। हमरे हर जग जीवना हर जप्यो हर गुरमंत। हर अगम दया हर अगम गोचर अगम हर। हर मिलिया आया चिंत हर आपे घट घट वरतदा। हर आपे आभ्यंत हर आपे सब रस भोगदा। हर आपे कमला कंत हर आपे पिख्या पाएदा। सब सृष्टि उपाई जी जंत हर देवो दान दयाल प्रभ। हर मांगे हर जन संत जन नानक के प्रभ आए मिल। हम गावे हर गुण संत। महला चौथा। हर प्रभ सज्जन नाम हर मैं मंतन नाम शरीर। सब आसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर तीर। पौड़ी हर ऊतम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला। जो जपदे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला। नित सार समाले सब जी जंत हर वसै निकट सब जौला। सो बूझै जिसिया बुझाए सी जे सतगुर पुरख प्रभ सौला। सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे। गुण गावत गुणी समौला। श्लोक महला चौथा। सुत्या हर प्रभ चेत मानो हर सह समाद लग समाए। जन नानक हर हर चाओ मन गुर तुठा मेले माए। महला चौथा। हर एक सेती परहड़ी हर एको मेरा चित। जन नानक एक आधार हर प्रभ एक स्ते गत पत। पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया। आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजया। आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजया। हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लजया। सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पर्दा कजया। श्लोक महला चौथा। भगत सरोवर उछलै सुबर परे वहन जिन्ना सतगुर मन्या जन नानक वट भाग लहन। महला चौथा। हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाए। हर हर अगम अगाध हर जन कित बिद मिलै मिलाए। हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए। जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम गोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा। किश वखर होए सो वर्णिया तसरूप ना रिखा। जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा। सत संगत सत गुर चट साल है जित हर गुण सिखा। तन तन सो रसना तन कर तन सो पादा सतगुरु। जित मिल हर लेखा लिखा।

जानो हम बिरथे, कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का, कहो तिन कहो क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प्या रापो, कोई मिले प्रभ मिल थे। हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुच्छ कर कर वर्ण थे, हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे, जन नानक के प्रभ समर्थ थे, कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप हर गुना कथ सुनथई, धर्म अर्थ सब काम मुख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम ते आवे हर जन, जिस वड भाग मथई, जै दरगे प्रभ लेखा मांगे, तै छूटे नाम ते आए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हम मैं मैल लग थई, गुर तार कृपा हर जल ना वाए, सब के लिख पाप कथई। जन कह हृदय अंतर प्रभ स्वामी।

हर हर प्रभ हर जप्यो जगन नथी, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पाथर रख बुढ़ थई कल्याण महला चौथा। हमरी चितवनी हर प्रभ जान, और कोई निंद करे हर जन की, प्रभता का कहया एक तल नहीं मानै रहाओ। और सब त्याग सेवा कर अच्युत, जो सब ते ऊंच ठाकर भगवान है, हर सेवा ते काल जोहे ना सकै, चरणी आए पवै हर जन। जा कौ राख ले मेरा स्वामी, ता कौ समत दे पै कान, ता कौ कोई अपर ना सकै, जा की भगत मेरा प्रभ मान। हर के चोज विडान देख जान, जो खोटा खरा एक निमख पछान, ता ते जन कौ आनंद भया है, रिद्ध सुध मिले खोटे पछतान। तुम हरदा ते समर्थ स्वामी, एक मांगो तुझ पासो हर दान। जन नानक कौ हर कृपा कर दीजै, सद बसै हृदय मुहे हर चरान। कल्याण महला चौथा। प्रभ की जय कृपा निदान, हम हर गुण गावेंगे, हम तुमरी करो नित्यास प्रभ, मोहे कब गल लावेंगे रहाओ। हम बारक मुक्त एआन पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन पूल बिगार जगत पित पावेंगे, जो हर स्वामी तुम दे हो सोई हम पावेंगे। मोहे दूजी नाही ठौर जिस पै हम जावेंगे, जो हर पावे भगत तिन्ना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत में लाए ज्योत रल जावेंगे। हरे आपे होए कृपाल आप लिवलावेंगे, जन नानक शरण द्वार हर लाज रखावेंगे। शक्का एक कल्याण पोपाली महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, दुख निवारण नारायण, सगल भगत जाचे सुख सागर, पावने दरन हर चिंता मणे रहाओ। दीन दयाल जगदीश दमोदर, हर अंतर जामी गोबिंदे, ते निरपो जिन श्री राम ते आया, गुरमत मुरार हर मुकंदे, जगदीशर चरण सरन जो आए, ते जन पावनित पार परे, भक्त जना की पैज हर राखे, जन नानक आप हर कृपा करे। राग कल्याण महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हमारे एह कृपा की जय, आलम करंद चरण कमल स्यों, मन फेर फेर दी जय रहाओ। आन जला स्यों काज ना कछुए, हर बूंद चात्रक कौ दी जय, बिन मिलबे नाही संतोखा, पेख दर्शन नानक जी जय। कल्याण महला पंजवा, जाचक नाम जाचे जाचे, सर्वतार सर्व के नायक, सुख समूह के दाते रहाओ। केती केती मांगन मांगे, पावनिया सो पाइये, सफल सफल सफल दर्शरे, परस परस गुण गाइये, नानक तत तत स्यो मिलिये, हीरे हीर बिधाइये। कल्याण महला पंजवा, मेरे लालन की शोभा, साध नवतन मन रंगी शोभा रहाओ। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, भगत दान जस मंगी, जोग ज्ञान ध्यान सेख नागै, सगल जपै तिरंगी, कहो नानक संतन बलिहार।

जो प्रभ के सत्संगी। कल्याण महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा मान हर हर मान नैन बैन श्रवण सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाओ ईत उत दह दिस रवेओ मेरत ने समान जत कथा तत पेखिए हर पुरख पत प्रधान साध संग भ्रम पै मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान। कल्याण महला पंजवा गुण नाद तोनिया नंद बेद कथत सुनत मुन जना मिल संत मंडली रहाओ ज्ञान ध्यान मान दान मन रसक रसन नाम जपत तै पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत् बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कशु दुख ना डंडली। कल्याण महला पंजवा कौन बेता की कहां करो तरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरो रहाओ बिशन महेश सिद्ध मुन इंद्रा कै दर्शन परो काहू पै राज काहू पै सुरगा कोट मदे मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाई है साधु चरण गहो। कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जोन कल काल जाल दुख विनाशन हर रखे रहाओ नाम तारी शरण तेरी प्रभ दयाल टेक मेरी अनाथ दीन आसवंत नाम स्वामी मनै मंत तुझ बिना प्रभ किशु ना जानू सर्व जुग मैं तुम पछानू हर मन बसे निस बसरो गोबिंद नानक आसरो। कल्याण महला पंजवा मंत्र जापिए भगवान गुर पूरे सो प्रसन्न पए सदा सुख कल्याण रहाओ सर्व कार्य सिद्ध पए गाए गुण गोपाल मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुखकाल कर कृपा प्रभ मेरे आ करो दिन रहन सेव नानक दास शरणागति हर पुरख पूर्ण देव। कल्याण महला पंजवा प्रभ मेरा अंतर जामी जान कर कृपा पूर्ण परमेसर निहचल सच शब्द निशान रहाओ हर बिन आना कोई समर्थ तेरी आस तेरा मंतान सर्व कटा के दाते स्वामी देह सो पहरन खान सुरत मत चतराई सोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण। कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन कल्याण करन प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ साध संग जपन संग जमकाल तिस ना खावनो मुक्त जुगत अनक सुख हर भगत लवे ना लावनो प्रभ दर्श लुब्ध दास नानक बहुड़ जोन ना तावनो। कल्याण महला चौथा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा रम रामो सुन मन पीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाओ काष्ट मैं ज्यो है बैसंतर मत संजम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सवाई तत गुरमत काढ़ लई जै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुई जै कृपा कृपा कृपा कर प्यारे गुरसबदी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सबदा हर रस की जै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा ली जै सतगुर आगम अगम है ठाकर पार सागर भगत करी जै कृपा कृपा कर दीन हम सारंग एक बूंद नाम मुख दी।

रस रसक गटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन कर तरीजै। मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा। राम गुरपारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर या तफीके, मिल सतगुर पारस की जय। रहाओ सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगै, मिल दर्शन तृप्त मन धीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय। मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै। चंदन वास भुयंगम वेड़ी, के मिलिए चंदन लीजै। काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिक्षेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पस्म करी जय। महायुगर पाप साक्त नरकी ने, मेरे साधु लुकी दीजै। साधु साधु साध जानी के, जनंतर नाम तरी जय। परस निपरस पय साधु जन, जन हर भगवान दखीजै। साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया, क्यों कर तंत नीजै। तंत सूत किशनिक सह नाही, साक्त संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जिवे हर माणक, गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिलै मिलीजै। नानक मेल मिलाए गुरपूरा, जन को पूर्ण दीजै। कल्याण महला चौथा। रामा राम राम राम रवीजै, साधु साधु साध जानी के, मिल साधु हर रंग की जय। रहाओ जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन कौ थम दी जय। बसदा तला तला सभी ऊपर, मिल साधु चरण रुली जय। अति उत्तम अति उत्तम हो वो, सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की, आन पानी सख्त भरी जय। मैन दंत निकसै गुरबचनी, सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अन गुरो बहु किया, गुर साधु पुरख मिली जय। गुण राम नाम बिसीरन की है, हर सगल भवन जस दी जय। साधु साधु साध मन प्रीतम, बिन देखे रह ना सकी जय। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरी जय।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागण हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझै अंधना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेसर करमी मिले वडाई। दिन दिन आवै तिल तिल शीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूडो ठौर ना पावै जब लग दूजी राई। अहनिस जियां देख संभाले सुख दुख प्रभ कमाई कर्महीन सच भीखिया मांगै नानक मिलै वडाई। प्रभाती महला पहला मस्त करो मूर्ख जग कहिया।

आनदन नाम दान प्रतकारी त्रिवत तरंग तत् विचारी अकथो कथो क्या मैं मोर अकथो कथो क्या मैं जोर भगत करी कराए मोर अंतर वसै चूकै मैं मोर किसे भी दूजा नहीं होर गुर का शब्द महारस मीठा ऐसा अमृत अंतर डीठा जिन चाख्या पूरा पद होए नानक त्राप्यो तन सुख होए प्रभाती महला पहला अंतर देख शब्द मन मानिया अवरना रंग नहारा एनस जिया देख समाले तिस ही की सरकारा मेरा प्रभ रांकण अतरूढ़ दीन दयाल प्रीत मन मोहन आतरस लाल सगूढ़ रहाओ ऊपर कूप गगन पनिहारी अमृत पीवन हारा जिसकी रचना सोबित जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रस कमल बेगासे सस्कर सूर समाया काल विध्वंस मनसा मन मारी गुर प्रसाद प्रपाया आत रस रंग चलू लै राती दूजा रंग ना कोई नानक रसन रसाए राते रव रया प्रभ सोई प्रभाती महला पहला बारह मैं रावल खप जावै चौछे मैं सन्यासी जोगी कापड़िया सिर खूथे बिन शब्द है गल फासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हठ हस्त मैं पीख्या जाची एक भाए लिवलागी रहाओ ब्राह्मण वाद पढ़े कर किरिया करनी कर्म कराए बिन बूझे किछ सूझे नाही मनमुख विछड़ दुख पाए शब्द मिले से सुचाचारी साची दर गए माने आन दिन नाम रतन लिव लागे जो जुग साज समाने सगले कर्म धर्म सुच संजम जप तप तीर्थ शब्द वसे नानक सदगुर मिले मिलाया दुख प्राहित काल नसे प्रभाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर कीर्त तरतारी कहां करे बपरा जम डर पै गुरमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवे साध मना रहाओ गुर उपदेश साच सुख जा कहो क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रतन पदार्थ खोजत गुरमुख लही है चीने ज्ञान ध्यान तन साचो एक शब्द लिव लावै निरालंब निरहार निह केवल निरपौ ताड़ी लावै सायर शब्द भरे जल निर्मल उल्टी नाम तरावै बाहर जातो ठाक रहावै गुरमुख सहि समावै सो गिरही सो दासो दासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कह अवर नहीं दूजा साच शब्द मन मानिया राग प्रभाती महला तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख विरला कोई बुझे शब्दे रहा समाई नाम रते सदा सुख पावै सच रह लिवलाई हर हर नाम जपो जन पाई गुर प्रसाद मन अस्थिर होवै अंदन हरस रहा अगाई रहाओ अन दिन भगत करो दिन राती इस जुग का लाहा पाई सदा जन निर्मल मैल न लागे सच नाम चितलाई सुख सिंगार सतगुरु दिखाया नाम वड्डी वड्याई अखुट भंडार भरे कदे तोट ना आवै सदा हर से वो पाई आपे करता जिसनो देवै तिस वसै मन आई नानक नाम त्याय सदा तू सतगुर दिया दिखाई प्रभाती महला तीजा निर्गुणी आरे को बख्श लै स्वामी आपे लहो मिलाई तू बेअंत तेरा अंत ना पाया सबदे देहो बुझाई हार जियो तुद विटो बल जाई तन मन अर्पी तुद आगै रखो सदा रहा सरनाई रहाओ अपने पाने विच सदा रख स्वामी हर नामो देह वड़ियाई पूरे गुरते पाणा जापै अंदन सही समाई
तेरे पाणै भगत जे तुद पावै आपे बख्श मिलाई। तेरे पाणै सदा सुख पाया गुर तृष्णा अग्न बुझाई। जो तू करै सो होवै करते अवर न करना जाई। नानक नामै जेवड़े अवर न दाता पूरे गुरते पाई। प्रभाती महला तीजा गुरमुख हरसा लाया जिन्ना तिन सलाए हर जाता विचों परम गया है दूजा गुर कै शब्द पछाता। हर जियो तू मेरा एक सोई तू जपी तुदै सा लाही गत मत तुझते होई रहाओ। गुरमुख सा लाहन से साद पायन मीठा अमृत सार सदा मीठा कदे ना फीका गुर शब्दी विचार। जिन मीठा लाया सोई जाने तिस विटो बल जाई शब्द सलाही सदा सुखदाता विचों आप गवाई। सतगुर मेरा सदा है दाता जो इच्छा सो फल पाए नानक नाम मिले वडियाई गुर शब्दी सच पाए। प्रभाती महला तीजा जो तेरी सरनाई हर जियो।

ज्यों भावै त्यों राखो मेरे स्वामी, एह तेरी वड्याई रहाओ, जो तेरी सरनाई हर जियो, तिन की करें प्रतपाल, आप कृपा कर रखो हर जियो, पोहे ना सके जमकाल, तेरी सरनाई सच्ची हर जियो, ना यो कटे ना जाए, जो हर छोड़ दूजे पाए लागे, ओ जमे तै मर जाए, जो तेरी सरनाई हर जियो, तिन्ना दुख पू किश नाहे, नानक नाम सलाहे सदा तू, सच्चे शब्द समाहे, प्रभाती महला तीजा, गुरमुख हर जियो सदा ते आवो, जब लग जी प्राण, गुर शब्दी मन निर्मल होवा, चूका मन अवमान, सफल जन्म तिस प्राणी केरा, हर कै नाम समान, मेरे मन गुर की सिख सुनी जय, हर का नाम सदा सुखदाता, सहजे हरस की जय रहाओ, मूल पछाण तिन निज कर वासा, सहजे ही सुख होई, गुर कै शब्द कमल परगासिया, हो मैं दुर्मत खोई, सब नाम एको सच वरतै, विरला बुझै कोई, गुरमति मन निर्मल होवा, अमृत तत्व खानै, हर का नाम सदा मन वसिया, विच मन ही मन मानै, सद बलिहारी गुर अपने विटों, जित आत्म राम पछानै, मानस जन्म सतगुरु ना सेविया, बिरथा जन्म गवाया, नदर करे ता सतगुर मेले, सहजे सहज समाया, नानक नाम मिलै वड्याई, पूरे भगत आया, प्रभाती महला तीजा, आपे पांत बनाए बहुरंगी, सिष्टियो पाए प्रभ खेल किया, कर कर वेखै करे कराए, सर्ब जियां नो रिजक दिया, कली काल में रवे आराम, कड़कड़ पूर रहा प्रभ एको, गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहाओ, गुप्ता नाम वरतै विच कल युग, कटकट हर भरपूर रहया, नाम रतन तिन्हा हिरदै प्रगटिया, जो गुर सरनाई पज पया, इंद्री पंच पंचे वसे आणै, खिमा संतोख गुरमत पावै, सो तन तन हर जन वड पूरा, जो पै बै राग हर गुण गावै, गुर ते मोह फेरे जे कोई, गुर का कहया ना चित तरै, कार्याचार बहु संपो संचय, जो किश करै सो नरक परै, एको शब्द एको प्रभ वरतै, सब एक स्ते उत्पत चलै, नानक गुरमुख मेल मिलाए, गुरमुख हर हर जाय रलै, प्रभाती महला तीजा, मेरे मन गुर अपना सालाहे, पूरा भाग हुआ मुख मस्तक, सदा हर के गुण गाहे रहाओ, अमृत नाम भोजन हर दे, कोट मदे कोई विर ला ले, जिसनो अपनी नजर करे, गुर के चरण मन माहे वसाए, दुख अनेरा अंदरों जाए, आपे साचा ले मिलाए, गुर की बाणी सो लाए प्यार, व्यथ उथ हो आधार, आपे देवे सृजनहार, सच्चा मनाए अपना पाणा, सोई भगत सुगड़ सुजाणा, नानक तिसकै सतगुरबाणा, प्रभाती महला चौथा, विभास एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, रसक रसक गुण गावै गुरमत, लिव उन्मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम विटो कुरबान, हमरे जग जीवन हर प्राण, हरी उतमरे अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रहाओ, आवो संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान, कित बिद क्यों पाई है प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत में हर हर वसिया, मिल संगत हर गुण जान, वड्डे भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान, गुण गावै प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक कहो गुर कृपा तारी, हर नाम दियो खिन दान, प्रभाती महला चौथा, उगवै सूर गुरमुख हर बोलै,
सब रहन संभालै हर गाल, हमरै प्रभ हम लोच लगाई, हम करह प्रभु हर पाल, मेरा मन साधु तूर रवाल, हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा, गुर पग चारो हम बाल रहाओ, साकत कहो दिन रहन अंधारी, मोहे फाथे माया जाल, खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो, रिन बांधे बहु बिदबाल, सत संगत मिल मत बुद्ध पाई, हो छूटे ममता जाल, हर नामा हर मीठ लगाना, गुरु किए शब्द निहाल, हम बारक गुर अगम गोसाई, गुर कर कृपा प्रतपाल, बिख पौ जल डुबदे काढ लिहो प्रभ, गुर नानक बाल गोपाल, प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा तारी, गुण गाए रसक रसीक, गावत सुनत दो पहे मुक्ते, जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक, मेरा मन हर हर नाम, मेरा मन हर हर राम नाम रस टीक, गुरमत नाम शीतल जल पाया, गुरमुख नाम शीतल जल पाया, हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ, जिन हर हृदय प्रीत लगानी, तिन्ना मस्तक उजल टीक, हर जन सोभा सब जग उपर, ज्यो विच उड़वा ससकीक, जिन हर हृदय नाम न वसियो, तिन सब कारज फीक, जैसे सिंगार करै देह मानुख, नाम बिना नगटे नक कीक, कट कट रमैया रमत राम राय, सब वरतै समयीक, जन नानक कव हर कृपा तारी, गुर बचन ते आयो करी मीक, प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभ तारी, मुख हर हर नाम कहे, पतत पावन हर नाम ते आयो, सब किल विख पाप लहे, जप मन राम नाम रव रहे, दीन दयाल दुख पंजन गायो, गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ, काया नगर नगर हर बसे ओ, मत गुरमत

अमृत नाम नारायण नानक पीवतंग संतना तृपते सहनशील संतंग समित्रस दुर्जन नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत मान भंगन शोभाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखन गोविंद नाम जपंत मिल साध संग नानक से प्राणी सुख बसन सैना साध समूह सूरज तंग सन्नाहं तन निमृता आवदे गुण गोविंद रमणं ओट गुर शब्द कर चरमण आरूढ़ ते अश्वरथ नागे बुजंते प्रमार्ग विचरते निर्भयं सत्र सैना तायंते गोपाल कीर्तन जितते विश्व संसार नानक वस्यं क्रोध पै तस्कर मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत ततः कुटुंब मोह मिथ्या स्मरंत नानक राम राम नाम नच विद्या निदान निगमं नच गुणग नाम कीर्तन नच राग रतन कंठं नह चंचल चतर चतर भाग उद्यम लभद्यंग माया नानक सा संग खल पंडित कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊच प्रेम तारणी जी पणिजो उत्तम सलोक उदरनंग नैन नंदनी गुरमंत्र ही नस जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्टन कुकरै सुकरै गर्भ दै काकै सर्पनै तुल खलै चरणार बिंद भजनं हृदयंग नाम धारण कीर्तनंग साध संगे नानक नह दृष्टांत जमदूतन नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजन नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वच्छ अंबर नच दुर्लभं सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभं बंता बिलास नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं नच दुर्लभं चतर चंचल दुर्लभं एक भगवान नामै नानक लभद्यंग सा संग कृपा प्रभं जत कतै ततै दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकै सर्वत्र रमणं गोविंद नानक लेप शेप ना लिप्या ते बिखिया पयंत अमृतं दृष्टा सखा स्वजन दुखं पयंत सुखियं पै पी पंत निर्भय थान बिहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुरै सर्वशील ममंगशीलं सर्व पावन मम पावन सर्व कर्तव ममं कर्ता नानक लेप शेप ना लिप्यते नह शीतलं चंद्र देव नह शीतलं बामन चंदन नह शीतलं शीत रुतेण नानक शीतलं सास्वजन मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण ज्ञानं सम दुख सुखं युक्त निर्मल निर्वैरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहित उपदेशं समित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी पर निंदा न स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेण कै खट लखन पूर्णं पुरख है नानक नाम साध स्वजन अजा पोगंत कंद मूलं

आत प्रपूर्ण है, निराश आस करनं सगल अर्थ आले है, गुण निधान समरंत नानक सगल जाचंत जाचक है, दुर्गम स्थान सुगमं महादुख सर्वसुखण है, दुर्वचन भेद परमं साकत फसनंत सुरजन है, अस्थतं सोगहरखं पै खीणंत निर्भव पै अटवियं महानगर वासं धर्म लखण प्रमया, साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं, हे अजित सूर संग्रामं अत बल नाबो मर्दन है, गण गंधर्व देव मानुख्यं पस पंखी बेमोहन है, हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है, हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनी परमावण है, चित हरणं त्रैलोक गम्यं जप तपसील विदारण है, अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावण है, तव पै विमुंचत साध संगम ओट नानक नारायण है, हे काल मूल क्रोधं कदंच करनाना उपर्जते बिखयंत जीवं वस्यं करोत निरत्यं करोत जथा मरकट है, अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तव संगे अदमं नर है, दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत, हे लोबा लंपट संग सिर मोर है, अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं अनक भांत बहु डोलते, नच मित्रं नच हिष्टं नच बांधव नच मात पिता तव लज्जिया, अकरणं क्रोत अखाद खाद्यं असाज्यं साज समझिया, त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञाप्त नानक हर नर हर है, हे जन्म मरण मूलं हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत, अनक माया विस्तीर्ण आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख वो बहुगण है, परम प्यान उद्यान रमणं महाविकट असाध रोगण है, वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे, हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निधान जगद गुरो, हे संसार ताप हरण है करुणा मैं सब दुख हरो, हे शरण योग दयाल है दीनानाथ मया करो, शरीर स्वस्थ खीण समाये समरंत नानक राम दामोदर माधव है, चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन है, साध संगेन तरणं नानक महासागर पैदुत्तर है, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन है, भगत वछला नाथ नाथे शरण नानक पुरखा चुत है, जैन कला तारियो आकाशं बैसंतरं काष्ट बेष्टं, जैन कला ससूर नक्षत्र ज्योतियं सासं श्रीर तारणं, जैन कला मात गर्भ प्रतिपालं नैच जंत जठर रोगण, तेन कला अस्थंबं सरोवरं नानक नैश जंत तरंग तोयण, गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणं सर्वत्र जीवन, लब्ध्यं संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भगतन, मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कै, सागरं लंघंत पिंगं तम प्रगास अंध कै, साध संगेण स्मरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे, तिलकहीणं जथा विपरा अमरहीणं जथा राजन, आवदहीणं जथा सूरा नानक धर्महीन तथा वैष्णव, न शंखं न चक्रं न गदा न श्यामं आश्चर्य रूपं अरहंत जन्मं, नेत नेत कथंत वेदा ऊंच मूचा पार गोविंद, बसंत साध हृदयं अचत बुझंत नानक वट भागी है, उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खर है, बिखम स्थान मन मोह मदरंग महा असाध पंच तस्कर है, हीत मोह पै परम परमणं अहु फांस दीखण कठन है, पावक तो असाध कोरंग अगम तीर न लंगन है, पज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरण कृपा कृपा करंत गोबिंद।

बाद समन जाओ इस प्रेम की दम केहो होती साट रावण होते सो रंकन जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए जप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म न जानई मर्त हिरत संसार प्रेम परम न बेदेओ उर्जो मिथ व्यवहार कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल मूसन तब ही मूसी है बिशरत पुरख दयाल जा को प्रेम सुआओ है चरण चित्व मन माहे नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहू जाहे लख काटी ऊंचो कनो चंचल चीत बेहाल नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार मूसन मगन मरम स्यो खंड खंड कर हार मगन पयो प्रे प्रेम स्यो सूद ना सिमरत अंग प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम आज जुगा दी सगल भगत ता को सुख विश्राम कबीर मेरी जात कहो सब को हसने हार बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो सर्वसूख को नायको राम नाम रस पियो कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ दिसे दांदे कान ज्यो जिन मन नाही नाओ कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए निरपय होए कै गुण रवे जत पेखो तत सोए कबीर जा दिन हो मुआ पाछ पया आनंद मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस हम राखे गुरे अपने उनकीनो आदेश कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए पलो पलो सब को कह बुरो न मन कोए कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत लह फाहे उठताव ते से जान मारे भगवंत कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़ो टाग पलास ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास कबीर बांस बडाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ कबीर जय जय हों फिर ओ कौतक ठा उठाए एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ आग लगो तेह तौल हारो जे नाही हर को नाओ कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान कबीर माया डोलनी
ਪਵਨ ਵਹਿ ਹਿਵਤਾਰ, ਜਿਨ ਬਿਲੋਇਆ ਤਿਨ ਖਾਇਆ, ਅਵਰ ਬਿਲੋ ਬਨਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ, ਮੁਸ ਮੁਸਲਾ ਵਹਿ ਹਾਟ, ਏ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਸਹਿ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਬਾਰੈ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ, ਕਰੈ ਜੋ ਬਹੁਤੈ ਮੀਤ, ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੈ ਏਕ ਸਿਉ, ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨੀਤ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਆਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ ਕਬੀਰਾ, ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਪਟ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਹੀਂ ਗਾਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਕਬੀਰ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜਾਂ ਕੋਠਾ ਕਰ ਰਾਮ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ ਆਵੈ ਕੌਨੇ ਕਾਮ। ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਸਿਉ ਕੀਏ, ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਭਾਵੈ ਕਰ ਰਮੁੜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ, ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਸਮਾਹੇ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ, ਪੈਸ ਜੋ ਨਿਕ ਸਜਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਹ ਕਰੋਰ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਕਵਨੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਕਹਿ

करते हुए सो होए। कबीर बैसनो की कुकर भली सागत की बुरी माए, ओह नित सुने हर नाम जस पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर हर दीपी अरी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिले दोनों वर्ण गवाए। कबीर हर दीपी रतन हर है चून चिहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात वर्ण कुल जाए। कबीर मुक्त

कबीर जा को खोजते पायो सोई ठौर, सोई फिर कह तू पया जा को कहता और। कबीर मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बेर, ओह चूले ओह चीरी है साकत संग नहेर। कबीर पार पराई सिर चरै चलो चाहे बाट, अपने पारे ना डरै आगे औकट घाट। कबीर बन की दादी लकरी ठंडी करे पुकार, मत बस परो लोहार के जारे दूजी बार। कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढिया कहूं ना पायो ठाओर, जिन हर का नाम ना चेतियो कहां पुलाने और। कबीर संगत करिए साध की अंत करे निर्वाहो, साकत संग ना कीजिए जाते हुए बिना हो। कबीर जग में चेतियो जान कै जग में रहो समाए, जिन हर का नाम ना चेतियो बंद है जन्मे आए। कबीर आसा करिए राम की अवरै आस निरास, नरक परै ते मन नहीं जो हर नाम उदास। कबीर सिख साखा बहुते किए केसो कियो न मीत, चाले थे हर मिलन कहो बीचे अटके उचीत। कबीर कारण बपरा क्या करे जो राम ना करे सहाय, जे जे डाली पग तरो सोई मुरमुर जाए। कबीर यवरह को उपदेश ते मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते खाया कर का खेत। कबीर साधु की संगत रहो जौ की पूसी खाओ, होनहार सो होए है सागत संग ना जाओ। कबीर संगत साध की दिन दिन दूना हेत, सागत कारी कामबरी तोए होए ना सेत। कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काए, जो किश किया सो मन किया मुंडा मुंडिया जाए। कबीर

कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते परम ना जाए, आप डुबे चौबे मैं चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट पै निदान सब जा पूछे धर्म राए। कबीर हर का सिमरन छाड़ के पाल्यो बहुत कुटंब, तंदा करता रह गया भाई रहा ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए, सरपन हो कै उतरे जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार, गधी हो कै उतरे पारस है मन चार। कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदय माहे, सूरी उपर खेलना ग्रहता ठाहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जा मुकैये राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कानो, लाख तजा फहराए, या सुख ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोरी कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीश की जगतो लंगे जाए। बूढ़ा बंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाव ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बांध्यो जह जेवरी, तेह मत बंधो कबीर, जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सो जाई सैनाहा, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैनाहा। कबीर नैन निहारो तुझ कहो श्रवण सुनो तो नाओ, बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नर्ग ते मैं रहो सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कह कहो कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया ममता रे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख भरे सरताल, चातरक जो तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चक्री जो निस बिछरे आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बेशोरिया रहोरे संख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देसे उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मैं सो क्यों सो वै सुख। कबीर सूता क्या कर है उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोमन होए गो लांबे गोट पसार। कबीर सूता क्या करे बैठा रहो अर जाग, जाके संगते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पोनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साक्त संग ना कीजिए दूर जाइए भाग, बासन कारो परसिए तौ कछ लागे दाग। कबीरा राम ना चेतियो जरा पहुंचो आए, लागी मंदिर द्वार ते आप क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो कि नो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाय पहुंचे खसम को जो बीच ना खाही कांब। कबीर ठाकर पूजे मोल ले मानहर तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तार पुले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार, इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार।
ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ ਮਸਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪਿਰਥ ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬ ਹੈ ਕਰ ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਬ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੈ ਕਾਲ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਜਨਤਿਕ ਦੇਖਿਆ ਜੈਸੀ ਧੋਈ ਲਾਖ ਦਿਸੈ ਚੰਚਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਮਤਹੀਨਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕਹੋ ਜਮ ਨਾ ਕਰੈ ਤਿਸਕਾਰ ਜਿਨ ਇਹੋ ਜਮੂਆ ਸਿਰਜਿਆ ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਕਸਤੂਰੀ ਪਇਆ ਭਵਰ ਭਏ ਸਬਦਾਸ ਜਿਉ ਜਿਉ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੀ ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਜ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ ਕਾਂਠੈ ਰਹਿ ਗਿਓ ਰਾਮ ਆਏ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਵਿਚੈ ਤੂੰ ਮਾਤਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਗ ਤੇ ਸੂਕਰ ਪਲਾ ਰਾਖੈ ਅੱਛਾ ਗਾਓ ਉਹ ਸਾਗਤ ਬੱਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾਓ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋਰ ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਕਬੀਰ ਬੈਸਰੋਂ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਮਾਲਾ ਮੇਲੀ ਚਾਰ ਬਾਹਰ ਕੰਚਨ ਬਾਰਹਾ ਪਿੱਤਰ ਭਰੀ ਪੰਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਰੋਣਾ ਹੋਏ ਰਹੁ ਬਾਟਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਮਾਨ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ

मुख ते राम समाल, हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किसू के नाहे, जिन एहो रचन रचाया तिसी माए सुमाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर है, कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी परान। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ, कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सिया, चिंत पे आप पे दे, नानक सो साला ही है, जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते, ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया, औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज, नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने, कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है, खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो, बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ई, जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी, बिरखा सुभ्र फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है, ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे, जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए, ते सबै रथा तल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो, ले सजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो, किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो, सब कट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बूझो नहीं, कट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ, चारो बेदो माहे। हर है खांड और रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जाओ तोहे साध प्रम की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के, ना खल पही ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है, बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ के, करे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे, सत पाखे रविदास। कबीर जो ग्रहो करे ता धर्म कर,

जे जाना लड़छ जना पीढ़ी पाई गंड तै जेवड मैं नाहे को सब जग डिठा हंड फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख अपने ग्रीवान मैं सिर नीवा कर देख फरीदा जो तै मरन मुकिया तिना ना मारे कुम अपने कर जाइय पैर तिना दे चुम फरीदा जा तो खटन वेल ता तू रता दुनी स्यो मर्ग सवाई नी है जा भरिया ता लद्या देख फरीदा जोथिया दाड़ी होई पूर अगो नेड़ा आया पिछा रया दूर देख फरीदा जेथिया सकर होई विस साई बाजो अपने वेदन कहिया किस फरीदा अखी देख पतीणिया सुन सुन रीणे कन साख पकंदी आईया होर करेंदी वन फरीदा काली जिनी ना रावे तौली रावे कोए कर साई सो परहड़ी रंगन वेला होए महला तीजा फरीदा काली तौली साहिब सदा है जे को चित करे अपना लाया परम नाल लग गई जे लोचे सब कोए एहो परम प्याला खसम का जय भावे तै दे फरीदा जिन लोइन जग मोहया से लोइन मैं डिठ कजल रेख ना सहंदिया से पंखी सुए बैठ फरीदा कू केंदिया चा गेंदिया मती देंदिया नित जो सैतान वंजाया सेकत फेरै चित फरीदा थियो पवाई दब जे साई लोड़े सब एक छिजै ब्याह लताड़ी ता साई दे दरवाड़ी है फरीदा खाक ना निंदी है खाकू जेड़ ना कोए जीवन दिया पैरां तले मुया उपर होए फरीदा जा लभता नेहो क्या लभता कूड़ा ने हो किचर चत लंघाई है छप्पर टुटै में हो फरीदा जंगल जंगल क्या पवै वन कंडा मोड़े है वसी रब है अली है जंगल क्या टूडे है फरीदा इनी निकी जंगी है थल डूंगर पवे ओम अज फरीदे कुंजड़ा सैको हाथी ओम फरीदा राती वड़िया तुख तुख उठन पास तिगत ना दा जीविया जिना विडानी आस फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मिता आयड़िया हेड़ा जलै मजीठ ज्यों उपर अंगारा फरीदा लोड़ै दाख बिजौरिया किकर बीजै जट हंडै उनकताएं दा पैंदा लोड़ै पट फरीदा गलिये चिकड़ दूर कर नाल प्यारे ने हो चला ता पिजै कंबली रहा ता टुटै ने हो पिजौ सिजौ कंबली अल्लै वरसो में हो जाए मिला तिना सजना टुटौ ना ही ने हो फरीदा मैं पोलावा पगदा मत मैली होए जाए गैला रूह न जानी सिरपी मिट्टी खाए फरीदा सकर खंड निवात गुड़ माख्यो माजा दुद सबे वस्तु मिठिया रब ना पुजन तुद फरीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख जिन्ना खादी चोपड़ी कणे सहणगे दुख रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो अज ना सुती कंत स्यो अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पछोड़ो हागणी तुम क्यों रहण विहाए साहुरै टोई ना लह पेय नाही थाओ परवातड़ी ना पुछई तन सो हागण नाओ साहुरै पेय कंत की कंता गमा था हो नानक सो सो हागणी।

वर्ष एक हो फिर ओ किने नौ पर चौल आयो कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुणों क्या कहो गुरदय मिलायो पिखिया जिब तू रखे तिव रहो पहर समाज सुना हो ज्ञान है आसन चढ़ो धर्म तनख कर गहे हो भगत सीले सर लड़े आओ पह निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्डे आओ काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बार गुर अमरदास सल पान तैं दल जितो इव युद्ध कर कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत ग्रंत नयावै रव सस्करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूरज ने की आसा सतगुर से परम पद पायो अबनासी अब गाते आयो तिस भेटे दर दरना चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन के रे अमे नाम जाको फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन और धरिया हर नाम रस गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवै संत करै मन मज्जन पुबजनो सेवा करिया तिन पहु निवार अन पै पादीना शब्द मात्र ते उदर धरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपै निरंजन करै लहा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अनपौ उन्मान अकल्यव लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मेटिया जन्मात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे अपर परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद समात गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कलुचरै तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमे रस रसन प्रकाशै मिलत सांत उपजै दुरत दूरंतर नासै सुख सागर पायो दिनत हर मग न हुटै संजम सत संतोख सील सनहु फुटै सतगुर प्रमाण बिदने सिरयो जग जस्तूर बजायो गुर रामदास कलुचरै तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नवनिध नाम निधान रिद्ध सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अबनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कलुचरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुटै सतगुर शब्द अथाह अमे तारा रस गुटै मत माता संतोख पिता सरसै समायो आजोनी संपावयो जगत गुर बचन तरायो आप गात्या गोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कलुचरै तैं जगतो धारण पायो
जगतो उदाहरण नाम निदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिसकी बिखै निवारण साहित रोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जनवट पागे ते मुक्ते पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कलुचर ते शब्द निशान मजायो से सदा सहे शावान संतोख सराय चाओ सदा सील सन्ना हो सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पालिया माल सदगुर संग निवास गुर रामदास कलुचर तो सह सरोवर वास गुर जिन कौ सो प्रसन्न नाम हरदय निवास है जिन कौ गुर सो प्रसन्न दुरत दूर अंतर नास है गुर जिन कौ सो प्रसन्न मान अभमान निवार है जिन कौ गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तार है परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग सतगुर खेमा ताने जुग जूत समाने अनपौ नेजा नाम टेक जित भगत्या गाने गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुम्हू रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बने आवै सतगुर नाम एक लेव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कथ होवै जियो तारन तरन खिन मात्र जा को दृष्ट तार है शब्द रिद विचार है काम क्रोध खोवै जियो जियन सवन दाता अगम ज्ञान बिख्याता अहन इस ध्यान तावै पलक

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सत युग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस्त कमल माथे पर धरियंग, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए, गुरु नानक निकट बसै बनवारी तें लहना थाप जोत जगतारी, लहना पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले कौ दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो हर नाम अखै निद चहो जुग गुर सेवा कर फल लहियंग, बंदे जो चरण सरन सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियंग, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप कोखण परणंग, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणंग, जेह अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते, जीते जम लोक पतत जे प्राणी हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग वंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछे जाकी सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण पग्गा ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया जस जन कै, एक पड़े सुने गावे प्रभाते करे इशनान, इशनान करे प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं रहया पूर बहुविद वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, जिनो बात निश्चल त्रु जानी तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच क्रम सेवी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसै दही पात खाहे जियो, देख रूप यतन रूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕ ਸਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸੁਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਸ਼ਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन ग्यंद, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तैं अगणत, तिनको मोह भया मन मद का। चौरासी लख जोन उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बेचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन प्याल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। मन ब्रह्मादिक रुद्रादिक, काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाईए परमार्थ, सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद, आद जिस कोय न जाने। शिव ब्रंच तर ध्यान, नित जिस वेद बखाने। निरंकार निर्वैर, अवर नहीं दूसर कोई। पंजन गण समरथ, तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो, जन्म मथुरा रसना रसै। श्री सतनाम करता पुरख, गुर रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया, त्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को। फुन त्रम तुजा फहरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच, सो और कछु ना विचारन को। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं, पवसागर पार उतारन को। संतत ही सतसंगत संग, सो रंग रते जस गावत है। धर्म पंथ तरयो तरनी तर, आप रहे लिव तारना तावत है। मथुरा पन भाग पले उनके, मन इच्छित ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर, सदा सभ्य दर्त नागर। संत मराल करै कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कलयुग दुर्त दूर कर बे कौ, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरै फिरत सगल जुग, कब होक को पावै आत्म प्रगास को। वेद बाणी सहत बरंच जस गावै जाको, शिव मन गह नात जात कबलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट पेख किए फिरत उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए, कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतर्गत, तेज पुंज तिहो लोक प्रगासे। देख दर्श पटक भ्रम पजत, दुख परहर सुख सहज बिगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत, आलस मुह जो कुसम सुभासे। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर, साचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहत, अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत, रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ।
दान बड़ो अतवंत महाबल, सेवक दास कयो एहो तथ, ताहे कहां परवाह काहूं की, जां कै बसीस धरयो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहयो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई, अपने आप ही हो पायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुर नर, गण गंधर्व खोजंत फिरे, अब नासिया चाला जोनी संपाओ, पुरखोत में आपार परे, करण कारण समर्थ सदा सोई, सर्व जीव मन त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं, तैं हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी, एक मन तन मन धन गोबिंद दियो, अंगद अनंत मूर्त निज तारी, अगम ज्ञान रस रसयो हियो। गुर अमरदास करता।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव तरलोचन नामा अवर कबीरपण। तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण। कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिद पावै। सोई रामदास गुर बल पहन मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो न रो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड़ियो पास ताते गौ हर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास। कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास। जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबसर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पाओ मान तुम मली अगर प्रगट सुवास। ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जिह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई। गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कश कही ना जाई सोडी सरिट सगल तारन कहो अब गुर रामदास कहो मिली बढ़ाई। हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुतदारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रख सरनाई। मोह मल बिवस कियो काम गै केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यो चाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्नै पव सागर बंदियो सिख तारे सो प्रसन्न। सिर आत पात सचो तखत योग भोग संजुत बल गुर रामदास सच सल पाण तू अटल राज पग दल। तू सतगुर चहु जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरै तुर आद जुगा द्यानाद कला तारी त्रय लोवै अगम निगम उदरन जरा जम्मै आरोवै। गुर अमरदास थिर थपे आओ परगामी तारण तरण अग अंतक बदै ना सल कव गुर रामदास तेरी सरण। सवैये महले पंजवें के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरंग सोई पुरखा चल अबनासी जे सिमरत दुरमत बलनासी। सतगुर चरण कवल रे तारंग गुर अर्जन गुण सहज विचारंग
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ, ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੁਜਸ ਵਖਾਣਿਓ। ਭਗਤ ਜੋਗ ਕਉ ਜੈ ਤਵਾਰ, ਹਰ ਜਨ ਕਿਉ ਪਾਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸਿਓ, ਹਰ ਅਸਨ ਬਸਾਇਓ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗ, ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ। ਬਡ ਭਾਗੀ ਉਨ ਮਾਨਿਓ, ਰਿਧ ਸ਼ਬਦ ਬਸਾਇਓ, ਮਨ ਮਾਣਕ ਸੰਤੋਖਿਓ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਇਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਅਨਭਉ ਠਹਿਰਾਇਓ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ, ਸਤਯੁਗ ਆਲੀਣਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਅਪਤੀਜ ਪਤੀਣਾ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨੀਮ ਸਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ। ਖੇਲ ਗੂੜੋ ਕੀਓ ਹਰ ਰਾਏ, ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ, ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਣੋ, ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵਿਓ, ਸੋ ਜਸ ਕਲ ਕਵੀਅਣ ਬਖਾਣਿਓ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਓ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਵਰਿਓ, ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮਾਣ। ਸਦ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਅਮੋਲ, ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਉ, ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰ, ਆਪਾਰਿਆ ਨੰਭਉ। ਅਗੈ ਗਹਿਣ ਪ੍ਰੰਭਾਂਤ ਦਹਿਣ, ਸੀਤਲ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਅਸੰਭਉ ਉਦਵਿਓ, ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤਾ। ਨਾਨਕ ਆਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾਸ ਜਗ ਅੰਦਰ, ਮੰਦਰ ਭਾਗ ਜੁਗਤ ਸਿਵ ਰਹਿਤਾ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਪਰ ਸਹਿਤਾ। ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ, ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੋਹੇ ਜਸ ਭਗਤਾ, ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ, ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਅਰਜਨ ਹਰ ਭਗਤਾ, ਧਰਮ ਧੀਰ ਗੁਰਮਤ ਗੰਭੀਰ, ਪਰ ਦੁਖ ਬਿਸਾਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਮ ਉਦਾਰ, ਅਹਮੇਵ ਨਿਵਾਰਨ। ਮਹਾਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਮਨ ਚਾਉ ਨਾ ਹੁਟੈ, ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ, ਮੰਤਰ ਨਵ ਨਿਦ ਨਾ ਨਿਖੁਟੈ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਸਹਿਜ ਜੰਦੋਵਾ ਤਾਣਿਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਜਾਣਿਓ। ਪੈ ਨਿਰਪਉ ਮਾਣਿਓ, ਲਾਖ ਮੈਂ ਲਖ ਲਖਾਇਓ, ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਗਤ ਗੰਭੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ। ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ, ਅਪਾਰ ਸਰ ਸੁਭਰ ਪਰਾਇਓ। ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ, ਅਪਾਰ ਸਰ ਸੁਭਰ ਪਰਾਇਓ। ਗੁਰ ਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਜਰ ਜਰਿਓ, ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ। ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਤ, ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਗੁਰਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਪੰਚਾ ਹਰਨ ਦਲਿਓ, ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਨਿਜ ਕਰ ਸਹਾਰਿਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੈ ਬਸਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਜਨ ਕੈ ਕਲਸ ਦੀ ਪਾਇਓ। ਸੋਰਠੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਪਾਰਥੋ ਚਾਲੈ ਨਹੀਂ, ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ। ਭਵ ਜਲ ਸਾਇਰ ਸੇਤ, ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਇਥਾ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਹੇਤ, ਨਾਮ ਲਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ। ਜਗਤ ਉਦਾਰਨ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਓ, ਅਬ ਨਾਹੇ ਅਵਰਸਰ, ਕਾਮ ਬਾਰੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਪਇਓ,
तत् स्यों तत् मिलायो। अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमृत शत्र गुर राम मै दियो। गुर रामदास दर्शन परस कहे मथुरा अमृत बैन, मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन भिखो नैन। सत रूप सत नाम सत संतोख तरियो और, आद पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक तोर। प्रगट ज्योत जगमगै तेज भूमंडल छायो, पारस परस परस परस गुरु गुरु कहायो। पन मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सनमुख रहो, काल युग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतरो। तेह जन जाचो जगतर पर जानियत, बासर रैन बास जा कोहित नाम स्यों। परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगे आओ, बासना ते बाहर पै देखियत ताम स्यों। अपर परंपर पुरख स्यों प्रेम लागो, बिन भगवंत रस नाही औरै काम स्यों। मथुरा को प्रभ सर्ब मैं अर्जन, गुर भगत कै हेत पाए रहो मिल राम स्यों। अंत ना पावत देव सवै मुन, इंद्र महा शिव जो करी। फुन बेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाडो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जग तारण को, गुरजोत अर्जन महे तरी। जग औरन यहे महात्म मैं, अवतार उजागर आन कियो। तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। एह पद्धत ते मत चूकै रे मन, भेद बपेद ना जान बियो। पर तच्छ हृदय गुर अर्जन कै, हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। जब लव नहीं पाग लिलार उदय, तब लव प्रमते फिरते बहुतायो। कल कोर समुन्द्र में बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। काल समुन्द्र पै रूप प्रगट हर नाम उदाहरण, बसै संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण। निर्मल पेख अपार तास बिन अवर ना कोई, मन बच जिन जाने आओ पयो तह समसर सोई। तरण गगन नवखंड मह, ज्योत स्वरूपी रहो पार। पन मथुरा कश भेद नहीं, गुर अर्जन पर तख हर। अजय गंग जल अटल, सिख संगत सब नावै। नित पुराण बाची है, वेद ब्रह्मा मुख गावै। अजय चवर सिर टोले, नाम अमृत मुख लियो। गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पै गयो। हर वंश जगत जस संचरियो, सो कमन कह श्री गुरमोयो। देवपुरी मैं गयो, आप परमेश्वर पायो। हर सिंहासन दियो, श्री गुर तह बैठायो। रैस पियो सुरदेव, तोहे जस जय जय जंपै। असुर गए ते पाग,
ਪਾਪ ਤਿਨ ਪੀਤਰ ਕੰਪੈ। ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ, ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ।

एको ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक वारा ते वधीक महला पहला उतंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी ससड़ सुइया केव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़वड़ी सखिए तौल हरी से पीट हंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैण्या पार पहला वत सियाण कै ता की चै वापार दोही दिचै दुर्जना मित्रा को जयकार जित दोही सज्जन मिलन लहु मुंदे विचार तन मन दी जय सज्जना ऐसा हसन सार तिस सौ नेहो ना की चई जे दिसै चलन हार नानक जिनी एव कर बुझिया तिना मिटो कुरबान जे तू तारू पाण ताहू पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वञाए नी कपरी चढ़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखे सरी सतगुर सिंह आलाए बेड़े डुबन नाहे पौ नानक दुनिया कैसी होई।

एको ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नावा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ कीन कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौ मीन बिख्यन स्यों काहे रचियो निमख ना होहे उदास कहो नानक भज हर मना परै न जम की फास तरना को यों ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक भज हर मना औद जात है बीत बिरद भयो सू

तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके ताम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत कहो नानक सुन रे मना औध कटत है नीत पांच तत् को तन रचियो जान।

कट कट में हर जू बस संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान उस्त निंदया नाहे जेह कंचन लोह समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान हरख सोग जा कह नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तहकट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौ मैं तजी, करता राम पशान। कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै, सफल होहे तह काम। जेहबा गुण गोबिंद पजहो, करन सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना, परह न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार। कहो नानक अपन तरै, और न लेत उधार। जो सुपना यार पेखना, ऐसे जग को जान। इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारने, प्राणी डोलत नीत। कोटन मैं नानक को, नारायण जह चीत। जैसे जलते बुद बुदा, उपजै बिन सह नीत। जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु ना चेतई, मद माया कै अंद। कहो नानक बिन हर भजन, परत ताहे जम फंद। जो सुख कौ चाहे सदा, शरण राम की ले है। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे है। माया कारण ता वही, मूर्ख लोग अजान। कहो नानक बिन हर भजन, बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै, रूप राम तह जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो, बिसरयो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन हर

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंद। मन माया में रम रहे हो निकसत नाहिन मीत। नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई। चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए। कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान। इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सैशन में मीत। जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन।

जो अनहोनी होए, एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है, परों आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे, कशु न होत उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ, कहो नानक एह बिपत मैं, टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो

राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन, संग अलाप आठो नंदन, प्रथम राग पैरो वै करही, पंच राग नी संग उचरही, प्रथम पैर भी बेलावली, पुनिया की गावे बंगली, पुन असलेखी की पई बारी, ए पैरों की पंचो नारी, पंचम हरख दिशाख सुनावे, बंगालम मदमाद वगावे, ललत बिलावल गावही, अपनी अपनी पांत, अष्टपुत्र पैरव के गावे गायन पात्र। द्वितीया माल कौसकिया लापे, संग रागनी पांचौ थापे, गोंड करी अरदेव गंधारी, गंधारी सी हुती उचारी, तनासरी ए पांचौ गाई, माल राग कौसक संग लाई, मारू मस्त अंग मेवारा, परबल चंड कौसको भारा, खौ खटियाओ पौरा नद गाए, अष्टमाल कौसक संग लाए, पुन आयो हिंडोल, पंचनार संग अष्ट सुत, उठह तान कलोल, गायन तार मिला वही, तेलंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई, सरस अहीरी ले पार जा, संग लाई पांचो वार जा, सुरमानंद पास कर आए, चंद्रबिंब मंगलन सोहाए, सरस बान औ आहे बिनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा, अष्टपुत्र मैं कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी,

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ है शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमर है कर नौन दयावै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उची मत पतकारा खा पाकाल पुरख वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाने दी सेवा करदिया अनेका भुल्लां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुल्लां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति हुई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनियां पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदियां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा।

बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी है, अहनस सहज

निरंकार। असंख जप, असंख पाव, असंख पूजा, असंख तपताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूर मुह पख सार, असंख मोन लिवलाय तार। कुदरत कवन कहां विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद पहावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे,

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो

भरपूर तिथै सीतो सीता मैं मा माहे ता के रूप ना कथने जाहे ना उह मरहै ना ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करहै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भांड।

तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीसर जोग जोग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग माछ पयाले गावन

तेरी अनक करह हर पूजा जी, तब ताप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावह मेरे हर भगवंता, तू आद पुरुख अपरंपर करता जी, तुझ जेवट अवर ना कोई, तू जोग जोग

लिए पत होए। ऊतम से दर ऊतम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामन रस।

जिन कौ सतगुरु थापिया तिन मेट न सकै कोय। ऊना अंदर नाम निदान है नामो प्रगट होए। नाउ पूजिए नाउ मनिए अखंड सदा सच सोए।

वसहिं, ज्यों पावै त्यों निर्जास। जी अरे राम जपत मन मान, अंतर लागी जल बुझी, पाया गुरमुख ज्ञान रहाओ। अंतर की गत जानिए, गुर मिलिए शंख उतार, मुया जित कर जाइए, तित जीम दिया मर मार। अनहद शब्द सुहावणे।

आए हर जस वखर ले चलहो शहु देखे पतियाए रहाओ। जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए खोटे वणज वणंजे आए मन तन खोटा होए फाही फाथे मिर्ग ज्यों दुख घणो नित रोए खोटे पोते ना पवहे तिन हर गुर दर्शना होए खोटे जात ना पत है खोट ना सी जिस कोए।

या नाम निदान अंतर हर रस रव रहया चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रगासया लागा सहज ध्यान मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार हौ मैं ममता मार कै हर राख्या उरतार हौ तिन

गया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हर से पील बलाए, देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए, जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

गुरमत हर लिव उबरे अलिप्त रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दरगाह मन्नी है।

पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख बसिया मन आए अंतर जोत परगासिया एक स्यों लिवलाए मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखया पाए गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए मेरे मन गुर शब्दी सुख होए

पछाण। गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान। काम क्रोध लोभ विनसया तजया सब अभिमान।

रहाउ। कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाह, वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह। कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह, चरण

अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निहचल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाइए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन हो वह शांत एक मन एक त्याई है मन की लाह प्रांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराध्य दिन विसरो नहीं रात जिनका पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तान मान तहन अर्पी सबो सगल वारिय ए जिंद देखै सुने हदूर साध कट कट ब्रह्म रविंद अकिरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवां।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन नावन जाओ मेरे मन हर पद सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखां की मित क्या गणी जन सिमरी गोविंद जिन चाख

राजन रिंद अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मजन इशनान रसना उचरै गुणवती कोई न पुजै दान दृष्ट तार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरवान।

तिसहत्या बहुमन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन माहे त्याय, गुर के चरण मन महे त्याए, छोड़ सगल स्यान पां, साज शब्द लिबलाए रहाओ। दुख क्लेश ना पौ ब्यापै, गुर मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए। देख दर्शन मन साधारे, पाप सगले जाहे, हौ तिन कै बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन बसै, साच हर का नाउ, सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ। श्री राग महला पंजवां, संच हर तन पूज सतगुर, छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार।

करणी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार, जो दिसै सो सगल तू है पसर या पासार, कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार, श्री राग महला पंजवां।

रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई बिरला। गत अवगत कश नदर ना आया, संतन की रेण नानक दान पाया। श्री राग महला पंजवा घर सतवा, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया। भूलह चूकह बारक तू हर पिता माया, सुहेला कहन कहावन तेरा बिखम पावन रहाओ। हौ मान तान करौ तेरा हौ जानो आपा, सभी मद सभै ते बाहर बे मोहताज बापा। पिता हौ जानो नाही तेरी कवन जुगता बंद।

हथ वडियाइया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करण हार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा।

सतगुर शरणी आया बाहुड नहीं बिनाश। हर नानक कदे न विसरो इहो जियो पिंड तेरा सास। श्री राग महला पंजवा। संत

सच्चा नाम सास गिरास न विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाईए सच नाम गुणतास।

नानक गुरु शरणागति मरै नहावै जाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड तित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा।

दर दर वेश रसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पूछना साजे पूछना टाहे पूछना दे वैले अपनी कुदरत आपे जाने आपे करन करे सबना

जाए, नेत्र वै सुहागणी साची नदर रजाए, साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है, कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार नारी।

श्री राग महला पहला गुर ते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहज

राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाई है शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाई है हर बार सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणी है गुर मेली गुण चार साच मिलो वर कामणी।

मन महमनुआ जे मरे ता फिर रावे नार इकत ता दैरल मिले गल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजय गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजय।

पीर रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवे खे सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवे।

तिड़ मल बिन गुर प्रीत न उपजै हौमै मैल न जाए सोहं आप पछाणिए शब्द भेद पतियाए गुरमुख आप पछाणिए।

नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला मन मुख भुले भुलाई है फूली ठौर न काए। गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवे जाए ज्ञान पदार्थ खोया।

मन मुख पात गवाई। बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई। हर सुखदाता मन नहीं वसया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया। आन दिन भगत करह

अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना छाऊ, तिन्ना पास न बैसिए ओना कर ना गिराऊ। कटिय है तै नित जालिय है ओना शब्द।

समाए, हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए, पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए, गुरमति हर सदा पाया, रसना हर रस

जाने खट दर्शन जगया खट दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम कुलाए सतगुरु सेव है तांगत मित पाव है हर जियो मन बसाए सच्ची बाणी स्यों चित लागै आवन जान रहाए पंडित।

जाता। प्रभु निकट वसै सबना कट अंतर गुरमुख विर ले जाता। नानक नाम मिले वडियाई गुर कै शब्द पछाता। श्री राग महला तीजा सहज।

उठा लिया, हुक्मी पांडे साजया, तू आपे पन्न सवार जियो। जिन सतगुर स्यों चित लाया, तिन दूजा भाव चुकाया। जिन सत

जियो हर इठे नित ध्यायंदा मन चिंदी सो फल पाएंदा सबे काज सवारियन लाहियन मन की भुख जियो मैं छड़िया सबो तंदड़ा गुसाई सेवी सचड़ा

करम धर्म नहीं पूजा। नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै बनजारिया मित्रा, सर हंस उलथड़े आए। जोबन घटै जरुआ जणै, बनजारिया मित्रा। आम घटै दिन जाए, अंत काल पछतासी। अंधले जां जम पकड़ चलाया।

सुहेले। कर्म धरती शरीर जुग अंतर जो बोवै सो खात। कहो नानक भगत सोह है दरबारे मन मुख सदा पवात। श्री राग महला चौथा घर दूजा शांत। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद इयाणी पे अड़े क्यों कर हर दर्शन पिख है। हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख सौहरड़ै कम सिख है। सौहरड़ै कम सिख है गुरमुख हर हर सदा त्याय। सहियां विच फिरै सुहेली हर दरगाह बां लुडाए। लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम के रखै। मुंद इयाणी पे अड़े गुरमुख हर दर्शन दिखै। व्याह हुआ मेरे बाबुला गुरमुखे हर पाया। अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया। बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया हर रतन पदार्थ लाधा। हौ मैं रोग गया दुख लाथा आप आपै गुरमत खादा।

अधहरे गुण साध संग मिल गावे नानक के स्वामी तार अनुग्रहो मन तन अंक समावे दखना सो हंदड़ो हब ठाए कोई न दिसै डूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेट ते।

आप मोहे हो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए रिझाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो हर कंठ लग सोहया दोख सब जोहया भगत लखियन कर बस पए मन सब सुख बुठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए

रंग रतड़ा हर रंग रत हर च्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन तन बन जवा

तुद आपे धरती साजी है, चन सूरज दोए दीवे, दस चार हट तुद साजिया वापार करीवे, एक नानो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे, तिन जम काल न व्यापई जिन सच अमृत पीवे।

आओ नानक पूर्व लिखिया कमावना अवर न करना जाए महला तीजा। होर कूड पढ़ना कूड बोलना माया नाल प्यार, नानक बिनना मैं को थिर नहीं पढ़ पढ़ होए खुआर। पौड़ी हर की वड्याई।